मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तीसरी तिथि तदनुसार 25 जुलाई वर्ष 2026 प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। इस पावन प्रभात में आपका हार्दिक स्वागत है। भोर की पहली किरण जब धरती की सुनहरी आभा से किरणों को भर देती है, मंदिरों की घंटियां श्रद्धा का संदेश सुनाती है, मस्जिदों से गूंजती आजान रूह को सुकून देती है, गुरुद्वारों से निकले शब्द की स्वर लहरियां वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। यही वह बेला है जब मन सहज ही ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। जीवन की सबसे अनमोल दौलत धन संपत्ति नहीं बल्कि प्रभु का प्रेम और उनकी कृपा है।

जब संसार की राहों में हमारा मन स्वयं को अकेला महसूस करता है, तब ईश्वर का सहारा ही हमारा सबसे बड़ा संबल बन जाता है। सच्ची श्रद्धा हमें ये विश्वास दिलाती है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है, और वैसे भी इस जग में हमारा उसके अलावा और उससे बड़ा सहारा कोई नहीं है।

जब गुरु की वाणी हृदय में उतरती है तो मन को शांति, विनम्रता और नई दिशा मिलती है। गुरुवाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक मधुर संदेश है। आइए इसी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं ये पावन शब्द।

ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई ईश्वर की प्रार्थना जीवन में धैर्य, न्याय और शुभ फल प्रदान करती है। तो आइए कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए श्रद्धा के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हैं।

ईश्वर करे आपका दिन सुख शांति उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा से भरपूर रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरित मानस कांड से आज का प्रसंग। स्वर है ए हरिहरन का और संगीत बद किया है सतीश भाटिया ने। तो लीजिए सुनिएगा श्री रामचरित मानस कांड से आज का ये प्रसंग।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था,

वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। स्वर था ए हरिहरन का और संगीत निर्देशन किया था सतीश भाटिया ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय सुबह के 6:40 हो रहे हैं। अब सुनिएगा आज का चिंतन।
1: ममता जीव का दैवी गुण है जो सीधे और सपाट रूप से अपनेपन का बोध कराती है। शब्द का यथार्थ बोध मन की भावना सहित स्वार्थ प्यार मोह स्नेह आदि के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अपनेपन की सार्थकता ये है कि इसमें प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है।

0: जिसमें ममता प्रदर्शित करने वाला भी डूबता है और जिसके प्रति ममता प्रदर्शित की जाती है वो भी उस प्रेम की धारा में डूब जाता है। ये एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी में सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है, लेकिन जिसका हृदय सरल, तरल और कोमल होता है, जिसके हृदय में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके हृदय में अपने पन के बोध का आधिक्य होता है, उसके मन में ममता सदैव जागृत रहती है। इसके विपरीत संवेदना शून्य क्रूर कर्मियों के मन में ममता सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की सोई हुई ममता जब जागती है तो अंगुलिमाल जैसा कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सन्यासी बन जाता है। ममता दो रूपों में परिलक्षित होती है, व्यक्तिनिष्ठ और समष्टिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ ममता की सीमा संकुचित होती है, जहां व्यक्ति ममता का प्रदर्शन केवल अपने प्रियजनों के प्रति ही करता है वो व्यक्तिनिष्ठ ममता कहलाती है। व्यक्तिनिष्ठ ममता को मोह भी कहा जाता है। स्वार्थ पूरित ऐसी ममता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसी ममता तो पशु पक्षी सभी में विद्यमान होती है। महत्वपूर्ण है समष्टिनिष्ठ ममता। ममता जब सीमा के बंधन को तोड़कर व्यापक रूप ग्रहण कर लेती है, ममता प्रदर्शित करने वाला संसार के सभी प्राणियों को प्रेम के बंधन में बांधकर अपना लेता है। संसार के किसी भी पीड़ित व्यक्ति के प्रति जब उसके हृदय में करुणा का बोध होता है और उसे दूर करने का जब वो मानसिक या शारीरिक प्रयास करता है, तो वहीं समष्टिनिष्ठ ममता प्रदर्शित होती है। इसी व्यापक ममत्व के वशीभूत होकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने राज्य पत्नी पुत्र का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत लिया। मदर टेरेसा संपूर्ण विश्व की मां बन गई और संपूर्ण विश्व को अपनी ममता के आंचल में समेट लिया। यही ममता का वास्तविक रूप है। जब किसी पीड़ित या दुखी व्यक्ति को देखकर यदि दर्शक के हृदय में पीड़ा की ऐसी सहानुभूति उमड़े कि दर्शक के आंखों में आंसू की अविरल धारा प्रवाहित हो उठे, तो वही सच्ची ममता होती है। बुद्ध, विवेकानंद और मदर टेरेसा के साथ ऐसा ही हुआ था। ममता हृदय को जोड़ती, करुणा को जन्म देती है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है। ये बुद्धि और तर्क से परे है। इसका समष्टि रूप ही विश्व में विश्व बंधुत्व और अपनापन ला सकता है, जो विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का चिंतन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रातः 7:31 पर प्रसारित होने वाले हमारे दैनिक कार्यक्रम में आज आपको जानकारी दी जाएगी विश्व डूब रोकथाम दिवस और विश्व IVF दिवस पर। साथ ही चर्चा की जाएगी प्रसिद्ध शिकारी लेखक और दार्शनिक जिम कार्बेट पर। 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी लीजिएगा भूमि और जल संरक्षण है बेहद जरूरी विषय पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय रहेगा गर्मियों में आपातकालीन स्थिति में क्या करें। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं, अब सुनिएगा कार्यक्रम काव्यधारा। आज के कार्यक्रम काव्यधारा में हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र जीत गहलोत का काव्य पाठ। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य धारा।
2: बेटियों को समर्पित गीत सबसे पहले प्रस्तुत करता हूँ। इन

0: एक और मुक्तक देखिएगा। हंसते हुए चेहरे तले चिंताओं को जिसने पढ़ा है, हंसते हुए चेहरे तले चिंताओं को जिसने पढ़ा है, उस मजुज ने ही धरा पर भाईचारे को गढ़ा है। और दुख किसी का दूर कर जो मुस्कुराहट दे उसे, दुख किसी का दूर कर जो मुस्कुराहट दे उसे, हो भले छोटा किसी से आदमी वो ही बड़ा है।
1: कार्यक्रम काव्यधारा में आप सुन रहे थे नरेंद्र जीत गहलोत का काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कंपीयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम जिंदगी लाइव। तो सुनना ना भूलिएगा ये कार्यक्रम। समय बता दें एक बार फिर आपको, दोपहर 12:05 पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु, परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणामनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबंधक स्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटल माध्यमेन 16 युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन् इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गंभीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचार विमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंग प्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि च अधिकृत्य पञ्चमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासर पर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्र प्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः

0: निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादश शतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेल सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मंत्रिमंडलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रोमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः संबंध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वति राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत

0: सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चेनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब समय है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का, जिसमें आज आप जानकारी लेंगे गर्मियों में आपातकालीन स्थिति में क्या करें विषय पर। तो सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: हमारे शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए गर्मी उत्पन्न होती है। इसमें से कुछ मात्रा में गर्मी शरीर का निश्चित तापमान बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है और शेष हमारे सांसों के द्वारा त्वचा की सतह के ऊपर से एवं पसीने के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आपके आसपास का वातावरण का तापमान आपके शरीर के तापमान की अपेक्षा ज्यादा हो तो क्या होगा। जो हवा आप फेफड़ों में भरेंगे वह फेफड़ों से निकली हवा के मुकाबले अधिक गर्म होगी। त्वचा उष्मा को शरीर से बाहर निकालने के बजाय और अधिक सोखेगी और ऐसे में यदि हवा में नमी हो तो पसीने की मात्रा भी कम हो जाएगी। यानी कि जो माध्यम शरीर से अनावश्यक उष्मा को बाहर फेंकते थे उन्हीं के जरिए अब अधिक उष्मा शरीर में एकत्र होगी और ऐसे में आपका कार्यस्थल ऐसे स्थान पर हो जहाँ खुली हवा का अभाव हो तो करेले के नीम चढ़ने वाली बात हो जाएगी। अत्यधिक तापमान से 3 परिस्थितियां पेश हो सकती हैं। पहला है हीट क्रैम्प। अक्सर यह तेज धूप में लगातार काम करने से उत्पन्न होती है क्योंकि मरीज को अत्यधिक पसीना आता रहता है। वह उस क्षति को पूरा करने के लिए ढेर सारा पानी पीता रहता है, मगर पसीने से न केवल शरीर से पानी का निस्सरण होता है बल्कि शरीर के आवश्यक लवण भी बाहर निकल जाते हैं जो मांसपेशियों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं। मरीज को पैर एवं पेट की मांसपेशियों में तीव्र खिंचाव व दर्द महसूस होता है। थकान महसूस होना, चक्कर आना अथवा आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना जैसे लक्षण भी इस अवस्था में दिखाई देते हैं। ऐसे में मरीज को तुरंत किसी शीतल स्थान पर ले जाएं, उसे नमक और शक्कर युक्त ठंडा पानी का घोल पिलाएं। दर्द युक्त मांसपेशियों की मालिश भी राहत प्रदान करती है। मांसपेशियों एवं माथे पर गुनगुने पानी से भीगे कपड़े को लपेटना भी अतिरिक्त सहायता देता है। यदि इन सब के बावजूद भी राहत न मिले तो मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। हीट एग्जॉशन। अक्सर यह उन स्वस्थ और सामान्य व्यक्तियों में देखने में आता है जो भीषण गर्मी या काम में कसरत करते हैं। वे पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक ग्रहण नहीं करते जो ऐसे वातावरण में बहने वाले पसीने की अतिरिक्त मात्रा की क्षतिपूर्ति कर सकने के लिए जरूरी होता है। अक्सर यह अग्निशमन दल के कर्मचारियों, बिल्डिंगों का काम करने वाले गोदी कर्मचारियों या बंद गोदामों में काम करने वालों में देखा जाता है। यदि व्यक्ति बीमार हो या पेट संबंधी बीमारियां जैसे दस्त

0: या उल्टी से पीड़ित हो तो परिस्थितियां और भी गंभीर हो जाती हैं। इसके प्रारंभिक लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, मतली आना, मांसपेशियों में जकड़न और चिड़चिड़ापन शामिल है। इस परिस्थितियों की विशेषता यह है कि मरीज को प्यास भी नहीं लगती, जिसके कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिसके चलते अत्यधिक पसीना आना, सारे शरीर में कमजोरी महसूस होना, घबराहट आना और मूर्छा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में मरीज को किसी शांत और शीतल स्थान पर ले जाएं और पूर्ण रूप से विश्राम करने दें। उसके शरीर से अंत्र वस्त्रों को छोड़कर अन्य सभी वस्त्रों को निकाल दें। उसे नमक और शक्कर युक्त पानी का घोल पिलाएं। यदि मरीज बेहोश हो तो उसे मुंह से कुछ न दें। बेहोश मरीज की सांस ठीक से चल रही है या नहीं, बस इस ओर गौर करें। उसके पैरों का जमीन से ऊंचा उठाकर रखें और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। गर्मी या लू से बचाव कैसे करें? इसके लिए अपने कार्यस्थल का वातावरण शीतल और आरामदेह बनाने का प्रयास करें। यदि आपको बुखार हो रहा हो तो पेट संबंधी कोई बीमारी हो तो अपने पर्याप्त नींद न ली हो या आपने शराब का सेवन किया हो तो बेहतर होगा कि आप धूप में काम न करें। अपनी त्वचा की नियमित सफाई करें और ध्यान रखें कि पसीना निकलता रहे। घर से बाहर निकलने से पहले अतिरिक्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करें। इसके लिए नींबू का शरबत या मट्ठा लिया जा सकता है। सफेद और ढीले वस्त्र पहने, लगातार या अत्यधिक श्रम न करें। घर पर लौटने के बाद ठंडे और खुले वातावरण में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आपने सुना। लीजिए, अब समय हो चला है कार्यक्रम खेती की बातें का, जिसमें आज हमारे किसान भाई जानेंगे भूमि और जल संरक्षण है बेहद जरूरी, इस विषय पर जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है भूमि और जल संरक्षण बेहद जरूरी। किसान भाइयों, भूमि और जल प्रकृति द्वारा मानव को दिए गए सबसे अमूल्य उपहार हैं। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व इन्हीं दोनों संसाधनों पर निर्भर करता है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सभी जीवित प्राणी भूमि और जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। मानव सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे और उपजाऊ भूमि पर हुआ है। कृषि, उद्योग, आवास, परिवहन तथा अन्य सभी विकास कार्य भूमि और जल पर आधारित हैं। इसलिए इन दोनों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण भूमि और जल दोनों संकट में हैं। यदि समय रहते इनके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में मानव जीवन अनेक कठिनाइयों का सामना करेगा। किसान भाइयों, भूमि केवल मिट्टी का एक भाग नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का आधार है। इसी पर खेतों में फसलें उगाई जाती हैं, जंगल विकसित होते हैं, पशु पक्षियों का निवास होता है और मनुष्य अपने घर, विद्यालय, अस्पताल तथा उद्योग स्थापित करता है। उपजाऊ भूमि में हमें अनाज, फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। भाइयों, भूमि के अंदर अनेक प्रकार के खनिज, धातुएं और प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाए तो कृषि उत्पादन कम हो जाएगा और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। किसान भाइयों, इसी प्रकार जल भी जीवन का आधार है। मनुष्य के शरीर का अधिकांश भाग जल से बना होता है। पीने, भोजन बनाने, खेती करने, उद्योग चलाने, बिजली उत्पादन, सफाई और दैनिक जीवन के लगभग प्रत्येक कार्य में जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक दिखाई देती है, लेकिन इसमें से अधिकांश जल खारा है। पीने योग्य मीठा जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि जल का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। वर्तमान समय में भूमि और जल दोनों अनेक समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। वनों को अंधाधुंध कटाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, खनन तथा अनियोजित निर्माण कार्यों के कारण भूमि की गुणवत्ता लगातार घट रही है। दूसरी ओर नदियों, झीलों और तालाबों में औद्योगिक अपशिष्ट तथा घरेलू कचरा छोड़े जाने से जल प्रदूषण हो रहा है। भूजल का स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है क्योंकि लोग आवश्यकता से अधिक पानी खर्च कर रहे हैं।

0: जबकि वर्षा जल का उचित संचयन नहीं किया जा रहा। किसान भाइयों, भूमि के संरक्षण के लिए सबसे पहले अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष मिट्टी को अपनी जड़ों से मजबूती प्रदान करते हैं और वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। किसानों को फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन अत्यंत प्रभावी उपाय है। प्रत्येक घर, विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक भवन में वर्षा जल को एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे भूजल स्तर में सुधार होता है और भविष्य के लिए पानी उपलब्ध रहता है। खेतों में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई संभव हो सके। किसानों की भूमिका भूमि और जल संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसान प्राकृतिक खेती, जैविक खाद, संतुलित सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करे तो भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है और जल की भी बचत होगी। इसी प्रकार सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भूमि और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। जल संरक्षण अभियान, भूजल पुनर्भरण, तालाबों का निर्माण, नदियों की सफाई, वृक्षारोपण अभियान और सिंचाई योजना, इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं है। जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक इन प्रयासों का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। तो किसान भाइयों, ये कहा जा सकता है कि भूमि और जल मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके बिना जीवन, विकास और समृद्धि संभव नहीं है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें।
1: भूमि और जल संरक्षण बेहद जरूरी, इस विषय पर आपने जानकारी ली कार्यक्रम खेती की बातें में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:15 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा आज रात 10 बजे, रात्रि 9:30 पर समय रहे।

समस्या और उससे बचने के उपाय। कृषि जगत कार्यक्रम में मछली तालाब की देखभाल पर चर्चा के साथ सुनिएगा लोकगीत व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। कार्यक्रम का समय वही संध्या 6:05 पर। युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आज की सौगातें होंगी। कुछ खास है आज गीत आपके नाम और बूस्टर। समय याद रहे संध्या 5:15 पर। दिन में 2:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही गीतकार आज केंद्रित होगा मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर पर। तो श्रोताओं ये तो थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। प्रातः के 7:18 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सब।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण

0: जिज्जू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इससे पहले गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। इस बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
4: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद सरकार उस पर सख्त कार्रवाई भी की। हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना है, वैसा जो आपके पास सुझाव हो दे ताकि उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक आओ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट, ओवररेटिंग, अव्यवस्था या अराजकता करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के किसी एक हिस्से तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है, ऐसे में हर जनपद में व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लेने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
5: कांवड़ यात्रा को लेके देवी से जुड़े हुए चाहे वो सरकारी विभाग हों या फिर आम जन हों या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना अंतर्गत ग्राम नयाकुंडा में एक पटाखा फैक्ट्री में कल शाम विस्फोट हो जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत सभी संवेदनशील जिलों में वहां का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है जानकारी, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: जिंदगी की कहानी में हर सुबह एक नया पन्ना जोड़ देती है। उस कहानी के पन्ने पर आज क्या लिखा जाएगा, ये हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे हौसले तय करते हैं। उसी हौसले और विश्वास के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में, जहां आज मैं हूं आपके साथ, आपका साथ निभाने फरीना। आइए आज की इस सुबह को जानकारी, प्रेरणा और सुरीले गीतों के रंगों से और भी खूबसूरत बनाते हैं। और जानकारी देते हैं सबसे पहले आपको विश्व डूब रोकथाम दिवस पर। श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम की रिमझिम फुहारें हमारे मन को बड़ा सुकून देती हैं, लेकिन इसी मौसम में डूबने की दुर्घटनाओं की खबरें अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। बारिश के दिनों में पानी से भरे तालाब, उफनती नदियां और नहरें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनका पानी में नहाने या तैरने जाना आम सी बात है, लेकिन कई बार जरा सी लापरवाही एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन लेती है। डूबने के इन हादसों के प्रति जागरूक करने के लिए ही साल 2021 से 25 जुलाई को विश्व डूब रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में 3 लाख से अधिक लोग ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बच्चों और युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों और युवाओं को तेज बहाव वाले स्थान पर नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें तैराकी सिखानी चाहिए। अगर आप या बच्चे कभी नाव में बैठें तो हमेशा लाइफ जैकेट पहने, और इस तरह का शौक रखने वाले हमें सुन रहे सभी साथियों से हम भी यही कहेंगे कि जरा सी देर की मस्ती के लिए अपने परिवार की खुशियों को नज़रअंदाज ना करें। बेशक हर मौसम की तरह बरसात का आनंद लें, लेकिन अपनी सुरक्षा को कभी ना भूलें, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। श्रोताओं, जहां एक तरफ आज का दिन हमें अनमोल जिंदगी को सुरक्षित रखने का संदेश देता है, तो वहीं दूसरी ओर आज का दिन ही चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि को भी याद दिलाता है, जिसने लाखों परिवारों के सूने आंगन में उम्मीद की नन्ही मुस्कान बिखेरी। तो आइए बात करते हैं विश्व IVF दिवस के बारे में। 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में दुनिया की पहली IVF शिशु लुईस ब्राउन का जन्म हुआ था। चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा देने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि की इस स्मृति में हर साल हम 25 जुलाई को IVF दिवस मनाते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसी तकनीक है जो उन दंपतियों के लिए वरदान है जो प्राकृतिक रूप से संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। विशेषज्ञों की देखरेख में की जाने वाली ये प्रक्रिया दुनिया भर के लाखों परिवारों के आंगन में मासूम बच्चों की किलकारियां गूंज देती है। आज का ये दिवस केवल विज्ञान की उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि समाज में निसंतानता से जुड़ी भ्रांतियों, सही जानकारी अपनाने और ऐसे परिवारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का संदेश भी देता है, जो कहता है कि जब ज्ञान, विज्ञान और उम्मीद का साथ हो, तो सूने घर के आंगन में भी एक नन्हे मेहमान के आने की खबर महक उठती है। तो आइए इसी महक के एहसासों से सजा ये खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: शतांगीत के बाद अब चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने पहले लोगों की जान बचाने के लिए आदमखोर बाघों का शिकार किया और आगे चलकर जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण की ऐसी मिसाल कायम की कि उनका नाम प्रकृति प्रेम का पर्याय बन गया। प्रकृति प्रेम के पर्याय उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है जिम कॉर्बेट। आज ही की तिथि साल 1875 को नैनीताल में जन्मे एडवर्ड जेम्स शुरुआत में एक कुशल शिकारी के रूप में जाने गए, लेकिन जंगलों को बहुत करीब से देखने और समझने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वन्य जीवों का बढ़ता खतरा जंगलों के घटते दायरे और इंसान की दखल अंदाजी ही है। इस सोच ने आपको वन्य जीव संरक्षण का सशक्त समर्थक बना दिया। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, द टेम्पल टाइगर और जंगल लव जैसी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें आज भी हमें जंगल की हसीन वादियों से परिचित कराती हैं और बरसों पहले उत्तराखंड की वादियों में स्थित उनके नाम पर बना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उनके प्रकृति प्रेम की अमिट पहचान रहा है। जिम कॉर्बेट का जीवन हमें यही संदेश देता है कि ये जंगल ये वादियाँ हमारी अनमोल विरासत हैं। ये जंगल ये वादियाँ हमारी अनमोल विरासत है। इसकी हर शय आने वाली नस्लों की खूबसूरत अमानत है। आइए प्रकृति से कुछ यूँ रिश्ता निभाएं, आइए प्रकृति से कुछ यूँ रिश्ता निभाएं कि हरियाली इस जीवन में सदा ही मुस्कुराए। तो इसी के साथ आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताएं इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं अब समय हो चला है कार्यक्रम के अगले सेगमेंट तिथि विशेष का।

श्रोताओं, इतिहास केवल बीते समय का लेखा झोंका नहीं होता, बल्कि वह आने वाले कल की नई राहें भी खोलता है। आइए पलटते हैं 25 जुलाई के पन्ने को और जानते हैं आज के दिन किन घटनाओं ने दुनिया को नई सोच और नई राहें दी। साथ ही जानेंगे कि किन महान हस्तियों का संबंध है आज के दिन यानी 25 जुलाई से। 25 जुलाई 1837 में विलियम कुक और चार्ल्स व्हीट स्टोन ने लंदन में विद्युत टेलीग्राफ का पहला सफल व्यावसायिक प्रदर्शन किया था। आधुनिक संचार व्यवस्था की नींव रखने वाली इस चमत्कारिक आविष्कार ने उस समय संदेश भेजने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया था। 25 जुलाई 1909 में फ्रांसीसी वैमानिक लुई ब्लेरियट ने अपने छोटे से विमान से इंग्लिश चैनल पार करके इतिहास रचा था। लगभग 37 मिनट की इस उड़ान ने दुनिया में ये साबित किया था कि साहस और विज्ञान मिल जाएं तो असंभव भी संभव किया जा सकता है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद लेने की परंपरा सी बन गई। ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और वर्तमान राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने भी इसी दिन पदभार ग्रहण किया था। इसलिए 25 जुलाई भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बेहद खास तारीख मानी जाती है। अब बात उन हस्तियों की जिनका जन्म 25 जुलाई को हुआ और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खास पहचान बनाई। हिंदी और संत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आज

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का जन्म आज ही की तिथि को 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने कबीरदास, संत परंपरा और भक्ति साहित्य पर गहरा शोध किया। 25 जुलाई 1919 को ही जन्मे महान संगीतकार और गायक सुधीर फड़के, जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता है। मराठी संगीत को नई ऊंचाइयां देने वाले सुधीर फड़के की कालजयी रचना गीत रामायण आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी दशकों पहले थी। भारतीय अभिनेत्री, गायिका, मॉडल और टीवी प्रेजेंटर रही रागेश्वरी लुम्बा ने 90 के दशक में अपनी अदाकारी और मधुर गायकी से खास पहचान बनाई। गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हुए दो दशकों बाद आपने साल 2024 में सावी फिल्म से हिंदी सिनेमा में शानदार वापसी की है। अब नमन करते हैं उन विभूतियों को जिनकी रचनात्मक विरासत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। 25 जुलाई 1956 को उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में याद किए जाने वाले प्रख्यात साहित्यकार, समाज सुधारक और शिक्षाविद गोदावरी मिश्रा ने अपनी जीवन यात्रा पूरी की थी। उनकी लेखनी की चमक ने सदैव ही समाज को नई रोशनी दी है। एक चाय वाले से लेखक और निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बी आर इशारा ने संघर्ष और प्रतिभा की अद्भुत मिसाल पेश की थी। 25 जुलाई 2012 को जिंदगी का साथ छोड़ने वाले बी आर इशारा ने मिलाप, एक नज़र और चेतना जैसी फिल्मों के जरिए समाज की अनकही सच्चाइयों को बड़ी बेबाकी से पर्दे पर उतारा था। तो आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की याद में, उनके निर्देशन में मिली चेतना फिल्म का ये सदाबहार गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: ब्रेक के बाद अब समय हो चला है कार्यक्रम में आज के अखबारों की सुर्खियां का। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हिंदुस्तान अखबार पर। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल की होगी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुद्वार मध्य रात्रि जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार पेपर लीक में

अपमान होगा अपराध। विधेयक राज्यसभा में पेश। संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह शुक्रवार को जारी हुआ। सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान और जनगणमन के समान दर्जा देने का प्राविधान किया गया है। आनंद बने फीडे के अंतरिम अध्यक्ष। 5 बार विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज का सर्वोच्च संस्था फीडे का अंतरिम अध्यक्ष पदभार संभाल लिया है, क्योंकि इसके प्रमुख आकार्डी ड्वेरकोविच को यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया था। अब खबर अमर उजाला से। PCS 2025 मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त या सितंबर में। 2025 मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में आने की संभावना जारी हुई है। 3030 करोड़ रुपए में बनेंगे 3 भव्य रसायन पार्क, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। देश में 3030 करोड़ रुपए के 3 भव्य रसायन पार्क बनेंगे। इसका निर्माण 5 साल में पूरा होना है। हर पार्क में कम से कम 8 वर्ग किलोमीटर का निर्बाध भूमि क्षेत्र होगा। और आगे अमर उजाला लिखता है, श्रेयस की कप्तानी में पहली सीरीज जीतने उतरेगा भारत। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। भारत ये मैच जीतता है तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये पहली सीरीज जीत होगी। और ये अंतिम खबर भी अमर उजाला से ही है। 11 वर्षीय भारतवंशी बोधना ने तोड़ा 38 साल पुराना रिकॉर्ड। 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन ने 2600 से अधिक रेटिंग के ग्रैंड मास्टर को हराने वाली दुनिया में सबसे कम उम्र की बालिका बच गई हैं। उन्होंने 38 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये थी आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने से पहले सुनवाते हैं आपको एक ऐसा गीत जो हर नई सुबह की तरह उम्मीद, विश्वास और आगे बढ़ते रहने का एक प्यारा सा संदेश देता है।

हर सुबह की तरह ये साथ भी बस अब यहीं तक, लेकिन उम्मीदों की रोशनी आपके पूरे दिन का हम सफर बनी रहे इसी कामना के साथ सूरज के साथ साथ कार्यक्रम से दीजिएगा अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नई बातों के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
6: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।

0: सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दिशा में सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंत्री हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड।

0: by wisdom, ethics, and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity, and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज
3: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें करगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP तस्से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। डंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्स यंगस्टर्स फॉर द सजेशंस टू हिज वीडियो ऑन प्रपोज्ड रिफॉर्म्स against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex, approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency, NTA, has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
7: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
6: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Delhi police has constituted a special task force, STF, to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Our correspondent has the details.
8: Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. These include Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, Institute of Banking Personnel Selection, National Testing Agency, as well as ministries or departments of the central government and their attached and subordinate offices for recruitment of staff. In addition to investigation, the Special Task Force will also ensure effective coordination with the prosecuting agencies to facilitate expedition prosecution to ensure that trials in such cases are conducted on a day-to-day basis. With Anand Kumar, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
6: The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system.
9: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposals were also discussed.
6: Delhi Metro Rail Corporation is informed that 18 stations have been closed from 7:30 this morning till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Rajiv Chowk, Patel Chowk, New Delhi, Central Secretariat, ITO, Mandi House, Supreme Court and others. However, DMRC noted that interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion and contribution to strengthening India-Romania relations. Accepting the honor, the president dedicated the award to the 1.4 billion people of India and said it reflected the enduring friendship between the people of the two countries.
0: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
6: We have a report from a correspondent.
10: The atmosphere at the Bucharest University of Economic Studies was marked by warmth, dignity and celebration. As President Murmu was conferred the university's prestigious honorary doctorate. The grand auditorium was filled with faculty members in academic robes, students, diplomats and distinguished guests who greeted the president with a standing ovation. The event was not just an academic ceremony but also a celebration of growing friendship between India and Romania with a sense of mutual respect, optimism evident throughout the hall. Subhashri Mahapatra for All India Radio News from Bucharest, Romania.
6: India strongly condemned the attack on the commercial vessel MV OMORFI in the Black Sea that claimed the life of an Indian national, describing attacks on merchant shipping as unacceptable and calling on all concerned parties to ensure the safety of maritime navigation and international commerce. According to the Ministry of External Affairs, MEA, the vessel was attacked on July 18th while transiting the Black Sea, reportedly in Russian territorial waters. The ship had 10 crew members on board, including 3 Indian nationals. The MEA said one Indian sailor lost his life in the attack, while the other 2 Indian nationals on board are safe. All 28 Indian crew members aboard the Mozambique-flagged LPG tanker Disha are safe following an attack on the vessel in Iranian territorial waters. The Embassy of India in Tehran confirmed this and acknowledged the incident involving the LPG tanker, Disha. In an official statement, the embassy said that it has been maintaining active contact with local officials to ensure the crew's well-being. The government has said that Indus Waters Treaty remains in abeyance until Islamabad abjures support for cross-border terrorism. Briefing media New Delhi, spokesperson in the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, dismissed Pakistan media reports that India is deliberately causing flooding in the neighboring country.
2: The recent increase in flows in the Chenab River is a direct consequence of intense monsoon rainfall over Jammu and the adjoining catchment areas during the last 3 days, which is between 20 and 23rd July. The rise in river flows is therefore a natural hydrological response to heavy rainfall and not the result of any deliberate action by India. Attempts to portray a weather-driven flood event as an upstream intervention are factually incorrect.
6: In Ladakh, Kargil War Memorial at Dras is fully prepared to host the grand celebrations of the 27th Kargil Vijay Diwas, commemorating India's victory in Operation Vijay. The two-day commemorative events will begin today with a series of programs honoring the courage and supreme sacrifice of the soldiers who laid down their lives during the 1999 Kargil War. Today's schedule includes Youth Sansmaran at Lamochan Viewpoint and the Shorya Sandhya ceremony at the Kargil War Memorial, bringing together veterans, next of kin of martyrs, senior army officers and dignitaries. We have more from a correspondent.
4: The Kargil War Memorial at Dras is viewing a festive yet solemn look as preparations for the 27th Kargil Vijay Diwas celebration have been completed. The two-day commemorative event begins today, while tomorrow, Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. Thousands of visitors, veteran family members of the Bravehearts and military personnel are expected to participate in the commemorative events. The celebrations stand as a tribute to the unmatched valor, courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Force during the 1999 Kargil War. For Akashwani News, Zainab Ali from Kargil.
6: The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall today in parts of Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Parts of Northeast India, coastal Karnataka, Gangetic West Bengal, Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, South Interior Karnataka and Uttarakhand also expected to receive moderate to very heavy rainfall today. Rescue and relief operations have been carried out on a war footing following the heavy rains in Gujarat. In the last 24 hours, 265 talukas of the state have received rain. 5 deaths confirmed by the State Relief Commissioner. In Assam, more than 1,15,000 people have taken shelter in relief camps as the flood situation continues to remain grim, with the worst impact being felt in Shivsagar, Charaidev and Jorhat districts. According to latest reports, 14 more flood-related deaths have been recorded, including 7 in Charaidev, 6 in Shivsagar and 1 in Jorhat. India opened its medals tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, after Jhandu Kumar clinched the bronze medal in the men's heavyweight para powerlifting. Jhandu, who hails from the Nalanda district of Bihar, delivered a strong performance by lifting 190 kg in his second attempt, earning 130 for 9 points and securing a place on the podium. Jhandu Kumar's bronze medal is a major achievement considering his challenging journey. He overcame polio at a young age and faced financial hardships while helping his family. His dedication to strength training and para powerlifting helped him rise to the international level. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shubhadra Ramachandran.
1: Thank you, Abhishek. The students' protests at Jantar Mantar is covered prominently by the dailies. Government steps up bid to end armed force. Protesters firm on Pradhan's exit, leads Hindustan Times. Government seeks time for call on Pradhan exit demand, says the Times of India. Cabinet clears bill imposing tougher paper leak penalties, leads the Statesman. 47 officials sacked in major neat paper leak purge. Legal action likely, notes the Tribune. Bill to grant Vande Mataram equal legal protection as national anthem introduced in Rajya Sabha, says the Statesman. The Indian Express in its editorial piece, Shine On Dick Parry, writes that the brilliantly crafted saxophone lines by Dick Parry, who passed away at 83 this week, were rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song. But imagine the song stripped off his saxophone and the incompleteness will reveal what he brought to them.
11: in his aching solo on Shine On You Crazy Diamond, written in

0: memory of Syd Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes PDA interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says the relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि ये बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और सीजेपी आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे असद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरक खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदामात एनटीए में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तेहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभु सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरखास्त तलब की है। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि इन इकदामात से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील नौ के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। एनटीए ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मर्तबा खिदमात हासिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स एसटीएफ तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। इन इम्तिहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड, بینکنگ عملے کے انتخاب کا ادارہ، امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اور مرکزی حکومت کی وزارتیں و محکمے نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور زیری دفاتر شامل ہیں۔ تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
2: دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری، پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
4: تھینک یو فرینڈ، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا۔
2: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی۔
5: میں ہوں اور کئی دشمی میں ہوں، باتوں پر ہر طریقے سے چلتا ہوں۔ ان کی مکھیتا تین ڈیمانڈ تھی اور پانچ چاندی
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنریس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رابندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے آئی ٹی ای سی ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔
6: particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
2: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
7: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا۔ عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا۔ یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا۔ रोमानिया से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल एमवी ओमोर्फी जहाज पर हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय शहरी की मौत हो गई थी। भारत ने तिजारती जहाजों पर किए जाने वाले हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया और सभी मुतल्लिका फरीकों से कहा है कि वो समंदर में आबदोरफ्त और बैन अलाक़वामी तिजारत की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वजारत खारजा के तर्जुमान इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया था। वजारत खारजा के मुताबिक इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया गया था जब यह जहाज बहरे अस्वद से गुजर रहा था। इस जहाज में अमले के 10 अफराद सवार थे, जिनमें 3 भारतीय शहरी भी थे। वजारत खारजा ने बताया कि इस हमले में एक भारतीय मल्लाह की जान चली गई और 2 भारतीय बाशिंदे जहाज में महफूज हैं। वजारत ने एक बयान में मुतासरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि भारत तजारती जहाजों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की जिंदगियों को जोखम में डालने की वाजह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचम बरदार एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और एलपीजी टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैरवाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ राबते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
7: द्रास में वाके कारगिल वार मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवकार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है, जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क्यादत करेंगे। हजारों विजिटर साबिक फौजियों शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत है। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बर्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता डीएमआरसी ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियात बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
3: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायत

0: के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रनावा इंकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रनावा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की है। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। पेश है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, ये आपकी मोहब्बत है कि रोजाना हम इस कार्यक्रम को आपके लिए सजाते हैं, और मोहब्बत जब अल्फाज से आगे बढ़कर एहसास बन जाए तो हर धड़कन एक मीठी सी धुन गुनगुनाने लगते ही। ऐसे ही बेपनाह प्यार की खुशबू से महकती एक सुनहरी सुबह का ये पहला गीत आपके लिए, जिसके बोल आज भी दिल को छू लेते हैं।

हसरत जयपुरी के लिखे गीत, शंकर जयकिशन के संगीत, बद किए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म सूरज में। आवाज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। आइए कार्यक्रम का अगला गीत भी आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत रचना शंकर जयकिशन की है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है रात और दिन। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में चारों ओर उजाला होते हुए भी मन के किसी कोने में एक अनकहा सा अंधेरा ठहर जाता है। ऐसे ही जज्बात को खूबसूरती से बयां करता है हमारे कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, इश्क के एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया की नजरों से नहीं बस दिल की धड़कनों में ही संभाल कर रखा जाता है। इश्क का अपना एक अदब होता है, न शोर न दिखावा, बस दिल से दिल तक पहुंचती एक खामोश सी आवाज और मोहब्बत की वही मीठी खामोशी और शर्मीली सी बात लिए है हमारा ये अगला गीत, क्योंकि दिलों की बात सिर्फ दिल ही सुनता है धीरे धीरे।

गोरा और काला इस फिल्म में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को। धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। आइए इसके बाद आनंद लेते हैं कार्यक्रम के अगले गीत का, जिसको आवाज दी है महेंद्र कपूर आशा भोसले ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है काजल। श्रोताओं, कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और कुछ दुआओं से, लेकिन जब दिल किसी एक नाम पर ठहर जाए तो बस वही पूरी दुनिया बन जाता है। और जब ऐसी जिंदगी हो जाती है, किसी का साथ मिल जाता है, तो कुछ वादे होते हैं, कुछ उम्मीदें की जाती हैं और कुछ गीत गुनगुनाए जाते हैं।

आंखें जब मुस्कुराती हैं तो दिल अपने आप धड़कनों की जबां समझने लगता है। नजरें वो बात कह जाती हैं जिन्हें लफ्ज भी बयां नहीं कर पाते। दो दिलों की खामोश गुफ्तगू और नजरों की इसी दिलकश कहानी को बयां करता है हमारे कार्यक्रम का ये अगला गीत।

राजेंद्र कृष्ण हसरत जयपुरी के लिखे गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत में मोहम्मद रफी लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म रखवाला में। श्रोताओं, हर मुलाकात की अपनी एक खूबसूरती होती है और हर दिल बिछड़ने से पहले यही चाहता है कि कुछ पल और ठहर लिया जाए। इन्हीं मीठे एहसासों के साथ अब बारी है आज के कार्यक्रम की अंतिम गीत की। तो लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म 10 लाख से आवाज मोहम्मद रफी की। गीत रचना और संगीत रचना है रवि की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। सुबह के 9:15 होने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल, आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ मंडल के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पर्यटन विभाग की कुल 27 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें मेरठ के 2, गाजियाबाद के 4, गौतम बुद्ध नगर के 3, बुलंदशहर के 7 और हापुड़ के 8 प्रस्ताव शामिल हैं। ब्रजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास और गंगा तट से जुड़े स्थलों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विरासत स्थलों को पर्यटन परिपथ से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को स्थानीय आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जन भागीदारी से जोड़ते हुए नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 199 मेधावियों को पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा के अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गाँव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज समाज में बिना विचार किए किसी भी विचारधारा या झंडे के पीछे चल पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं को पहले यह समझना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह देश हित में है या नहीं। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों से सही सोच और राष्ट्रहित की भावना को विकसित करना भी है। श्रावण यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु शासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन SP गोयल एवं DGP राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर मंडलायुक्त सभागार में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से संबंधित समस्त अधिकारी भी जुड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा कार्यवाही से अवगत कराया गया। बैठक कांवड़ यात्रा के संबंध में आने वाली चुनौतियां एवं उनसे निमटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सफलता पूर्वक संपन्न कराना हम सभी का साझा दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग अपने अपने दायित्वों एवं दिए गए निर्देशों का 100% सुनिश्चित पालन करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान संपूर्ण कांवड़ मार्ग एवं उससे जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर नियमित साफ सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड़ शिविरों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। शिविर के लिए आवश्यक अनुमति, विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य सभी सुरक्षा मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2: कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट न हो, चार रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग योगदान करें।
1: केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया में हुनरमंद महिलाओं ने रोजगार शुरू किया और कामयाबी के कदम चूमे। मेरठ की ममता गर्ग ने घर से ही हैंडीक्राफ्ट का कार्य शुरू किया। उन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना में 10 लाख का लोन मिला, जिससे ममता गर्ग ने काम को आगे बढ़ाया। आज वह भगवान की पोशाक, लड्डू गोपाल, सिंहासन पालने, बंदरवार, विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बना रही हैं। खुद सशक्त बनने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। आज उनका हैंडीक्राफ्ट भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पसंद किया जा रहा है।
3: मेरी काफी सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि मैं भगवान के पालने, सिंहासन ये सब बनाते हैं, बंदनवार बनाते हैं और पूजा के लक्ष्मी गणेश और होली से रिलेटेड सामान सभी कुछ हमारे यहाँ बनता है।
1: मेरठ में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद अरुण गोविल मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को मुख्यमंत्री कौशल कैशलेस योजना का कार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अच्छा शिक्षा का माहौल और शिक्षा का स्तर मिल रहा है।
0: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का।
4: पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वामी विवेकानंद के गुरु पौहारी बाबा के आश्रम में दर्शन पूजन के बाद केंद्र में NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पद मिलने के बाद गाजीपुर में प्रथम आगमन पर कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों में जितना जनता उत्साह से भाग ले रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नगर विकास राज्य मंत्री उमेश राय का भी आगमन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के पैतृक गांव पलिया में हुआ। पलिया पहुंचने पर उमेश राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। गाजीपुर में किसान कल्याण के लिए जगह जगह कैंप लगाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती तथा KCC के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक विजय कुमार ने कहा कि धान के मौसम में किसान नर्सरी के बजाय सीधे खेतों में नमी के बीच बीज बोकर खेती कर सकते हैं, इससे उपज अच्छी होती है। उन्होंने सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों से बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की खेती करने की भी अपील की। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक राजदेव ने कहा कि मात्र 4% ब्याज दर पर सभी किसानों का KCC कार्ड बनाया जा रहा है एवं KCC बन जाने पर सभी किसान फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने गाजीपुर के सभी किसानों से अपने निकटतम बैंक से KCC बनवाने की अपील की। आगामी कांवड़ यात्रा एवं श्रावण माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने गाजीपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा, स्नान, जल लेने या जलाभिषेक के समय न हो, इसके लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध देवालयों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
5: श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, ये हम लोग की व्यवस्था है कि आवागमन में कोई दिक्कत न हो, उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, स्नान करने के लिए प्लस जल लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, भीड़ का नियंत्रण ठीक से हो, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, यही सब देखा जा रहा है।
4: गाजीपुर के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि अभी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने वाले निपुण भारत मिशन के तहत जनपद के 30% स्कूल ही आच्छादित हो पाए हैं। ऐसे में जिले के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित की जानकारी देने का लक्ष्य निर्धारित है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:25 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती गाती है। उससे पहले आपको बता दें कि आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में आप सुनेंगे आधी आबादी से क्रम में लघु नाटिका बड़ी बहू। शोभित शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को निर्देशित किया है अंकित सैनी ने। समय 9:25, तो लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम धरती गाती है। आज के धरती गाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोता, धरती गाती है कार्यक्रम जिसमें रोजाना हम आपके लिए लाते हैं अपने क्षेत्र की लोक परंपराओं की खुशबू। तो आइए उसी अनमोल खजाने से हम लाए हैं आपके लिए आज कुछ सुंदर मधुर रागनियां वीर सिंह शर्मा और साथियों के स्वर में। तो डूबते हैं लोक रस में और सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रागनी।

लोक परंपरा की यही खूबसूरती है कि हर रागनी अपने साथ कोई ना कोई जीवन संदेश लेकर आती है। रिश्तों की गरिमा और संस्कारों की मिठास को स्वर देती इस प्रस्तुति के बाद अब बारी है एक और अर्थपूर्ण रागनी की।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: वीर सिंह शर्मा और साथियों के स्वर में कुछ रागनियां आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है में, और केंद्र है अब आपका अपना आकाशवाणी नजीबाबाद। श्रोताओं, लोक दिनों की सरलता सीधे दिलों तक असर करती है। आप सुनिएगा कार्यक्रम की अगली रागनी, जो बदलते समय और समाज की तस्वीर दिखाती है।

जीवन की छोटी छोटी बातें भी लोक संगीत में बड़ी सहजता से समा जाती हैं। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की अंतिम रागनी, जिसमें जीवन की छोटी सी बात समाई हुई है।

सी रागनी के साथ आज का लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 10 बज रहे हैं। अब पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे।

0: कुछ खतों में यादों की खुशबू है, कुछ संदेशों में अपनापन बसा है, हर फरमाइश में किसी दिल का अरमान, किसी रिश्ते का प्यार छुपा है।
1: तो श्रोताओं, आइए इन्हीं जज्बातों को सुरों का साथ देते हैं। आपके खतों और व्हाट्सएप मैसेज से सजी इस महफिल में चलते हैं फिल्मी गीतों के उस सफर पर, जहां हर धुन किसी न किसी दिल की आवाज है।
0: तो रिमझिम, आपके हमारे जो श्रोता हैं अपने पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों से जो हम आज चुनेंगे फिल्मी गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं, पर उससे पहले
1: जी जी बिल्कुल फरीना, उससे पहले अपने श्रोताओं को बता देते हैं व्हाट्सएप करने के लिए, मैसेज करने के लिए क्या है हमारा नंबर।
0: हमारा नंबर है 9457078288। और श्रोताओं, अगर आप कार्यक्रम में पत्रों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763।
0: तो लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपका इस गीत द्वारा स्वागत करते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म बाहुबली द बिगनिंग से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म बाहुबली द बिगनिंग से पलक मुछल एमएम करीम के साज में, और उन्हीं की आवाज़ में मनोज मुंतशिर का ये गीत आपने सुना। इस गीत के लिए ये फरमाइशी पत्र हमें भेजा था अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद उनके साथ हैं बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ही आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा।

0: रिमझिम
1: जी फरीना,
0: गीत के बाद हमारे अन्य श्रोताओं को इंतजार होगा कि कब हमारा मैसेज शामिल होगा, तो जल्दी से उनके मैसेजेस शामिल कर लेते हैं।
1: जी, तो जो कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए हम तक फरमाइश भेजने वाले हैं मैसेज के थ्रू। ये मैसेज है साबिर अली, ग्राम दहनपुरा, जिला मुरादाबाद से हमें मैसेज कर रहे हैं।
0: और ये अगला मैसेज जो हम शामिल कर रहे हैं ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव फ्रांसी, जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, झज्जर, हरियाणा से।
0: और इसी गीत को पसंद किया है जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। और उनके साथ ही मैसेज कर रहे हैं नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। और अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रिमझिम
1: नसीम, रेडियो श्रोता संघ, नागचून रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी।
0: और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, मोहम्मद जबीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद फाजिल। ये अगला मैसेज हमें भेजा है,
1: ये मैसेज हमें भेजा है फारुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से, भेजने वाले हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू और पवन गॉड और उनके दोस्त। साथ में ये मैसेज भेज रहे हैं कासगंजी से योगेंद्र।
0: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे श्रोता हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना।
1: और इसी गीत को पसंद कर रहे हैं आप मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज और साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, नूर महल महसौल, सीतामणि बिहार से।
0: तो आइए श्रोताओं आप सब की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर कुमार सानू को फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। संगीत दिया है जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, जहां आज इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूं मैं फरीना, और मेरे साथ है
1: मैं रिमझिम बलूनी। तो फरीना, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: हाँ,
1: और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है जो हमारे श्रोता जिसे पसंद कर रहे हैं। आवाज है चित्रा सिंह की, और इस गीत को लिखा है फैज अनवर ने, फिल्म का नाम है तुम बिन, और संगीत दिया है निखिल विनय ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। ये मैसेज हमें मिला है संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। भेजने वाले हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी।
0: इसी गीत को पसंद किया है हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहावकर, निर्मला विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से ही हैं नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुहरेकर।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत कुमार वर्मा, और साथ में सोनम वर्मा।
0: इसी गीत को पसंद किया है मलौट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, विवान मिगलानी और उनके परिवार के सदस्यों ने।
1: और सुनना चाहते हैं इसी गीत को गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्मी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
1: ये मैसेज हमें मिला है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा का, मजनू का टिल्ला से और सतना एमपी से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
0: इसी गीत को पसंद किया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रशीद वारसी। उनके साथ है किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया अंजुम खान।
1: और सुनना चाहते हैं इसी गीत को शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे।
0: तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म तुम बिन में चित्रा सिंह को।

0: लीजिए श्रोताओं, गीत के बाद हम लौट कर फिर आ गए हैं और आपको कार्यक्रम में अगर जो हमारे नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं रिम जी,
1: जी
0: तो क्यों ना उनको फिर से नंबर बता दिया जाए।
1: बिल्कुल फरीना, जो भी हमारे नए श्रोता कार्यक्रम में मैसेज भेजना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई गीत, तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9457078288। और फरीना, नंबर तो मैंने बता दिया, अब कार्यक्रम का पत्र के लिए आप पता भी बता दीजिए।
0: जी हाँ, क्यों नहीं श्रोताओं, कार्यक्रम में अगर पत्रों के माध्यम से आप अपने फरमाइशी गीत को सुनना चाहते हैं तो लिख भेजिएगा हमें इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467636। तो श्रोताओं, अभी आते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
2: तो रिमझिम कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाए।
1: बिल्कुल।
2: तो श्रोताओं, बता देते हैं कार्यक्रम का गीत हम आपकी फरमाइश पर कौन सा सुनवा रहे हैं। हम सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म प्रोफेसर में शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए इस गीत को। लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत की सुनने की हसरत पेश की है। ये है हमारे श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टाकीश, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से आपने ये मैसेज भेजा है।
1: और ये पत्र मिला है हमें मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का।
2: पटेल नगर मलौट पंजाब से ही हमें मैसेज कर रहे हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया और गुड्डू।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हितेंद्र दास। ये मैसेज इन्होंने हमें लिखा है असम से।
2: अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा।
1: और ये मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती से फतेह खालसा से। भेजने वाले हैं बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सालिम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग।
2: और ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं लहोडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नीति, जगमोहन, सुधीर, नूतन, उन्हीं के साथ मैसेज कर रहे हैं करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल यादव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव और छत्रपति, संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज।
2: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना नगर शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदरा मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही और स्वाति मौर्य। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म प्रोफेसर में।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक उदित नारायण के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है विजू शाह ने और फिल्म का नाम है प्यार इश्क और मोहब्बत। और बड़ी ही मोहब्बत से ये मैसेज हमें भेजा है,
1: ये मैसेज भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने।
0: और अगला मैसेज भेज रहे हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये मैसेज हमें मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से, भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा।
0: अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी बाग अंकोला से, रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और उनके साथ हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला और नसीमा बेगम।
1: ये मैसेज हमें मिला है गांव खरकड़ा चौबीसी से, इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका।
0: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, दानिश अहमद सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन और उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और हम श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं और कि वो बार बार हमें मैसेज ना करें, अगर आपका मैसेज हम पढ़ चुके हैं, कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं,

0: तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि फिर दोबारा से आप मैसेज मत कीजिए। तो ये मैसेज हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से, भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बड़ापुर से मोहम्मद ताहिर और उनके परिवार के सदस्यों ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ से, कासगंज यूपी से योगेंद्र, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया।
1: ये मैसेज हमें भेजा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म प्यार इश्क मोहब्बत का ये गीत।

0: रिम जिम कार्यक्रम का अगला गीत कौन सा सुनवाना है श्रोताओं को?
1: अपने श्रोताओं को जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं वो है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है शिकारी और संगीत दिया है जीएस कोहली ने और गीत के बोल लिखे हैं फारूक केसर ने।
0: और इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, सुदेश चौहान।
1: और इसी गीत की फरमाइश हम तक भेजी है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने।
0: और इसी गीत को सुनना चाहा है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना। और यही गीत सुनना चाहा है
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं अब्बास आलम, अमजद आलम और बेबी निशा और उनके घर के सभी सदस्य मगनपुर झारखंड से।
0: ये मैसेज हमें भेज रहे हैं गांव जाखौद राजस्थान से शंभू दयाल, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा।
1: और बागपत उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें मिला है ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया का।
0: ये मैसेज हमें भेज रहे हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चोरी।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। कोयते वस्ती पुनावली से इसी गीत की फरमाइश हम तक भेजी है अजय सोनवड़े, करिश्मा, अविका और साईशा सोनवड़े ने।
0: इसी गीत को पसंद किया है संगीता टाकिस शाहगंज आगरा से, महफूज पटेल अंसारी, फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा, हिफ्जा, जिक्रा, हबीबा, हलीमा, हसन और चिट्टू ने।
1: ये गीत सुनना चाहते हैं फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ से गीता नायक, निहारिका, सुशांत और सुरेश और साथ ही योगेंद्र नायक।
0: इसी गीत को पसंद करने वाले ये अगले श्रोता हैं जेवरा हिसार से वीरेंद्र भियाड़, शमशेद भियाड़, सुरेंद्र भियाड़, मनोज भियाड़। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म शिकारी का ये गीत।

0: रिम जिम, अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं मैसेजेस कि हमारे कौन कौन से श्रोता कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश कर रहे हैं।
1: जी फरीना, ये मैसेज हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। गीत को सुनना चाहते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, और ये मैसेज हमें भेजा है हमारे श्रोता हैं ये गाजियाबाद से। इन्होंने अपना नाम तो कहीं नहीं लिखा है रिमझिम, है ना?
1: जी, तो हम यही कहेंगे श्रोताओं से कि अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो अपने पते के साथ अपना नाम जरूर लिखिए।
0: तो कार्यक्रम का अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पटियाली रोड गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, अरीबा और हबीबा।
1: ये मैसेज हमें मिला है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, रोहिणी दले, ऋषिकेश और जीविका का। पूनावाले पुणे से ये मैसेज हमें मिला है आरसी कामड़े, करुणा और अश्विनी और विपुल कामड़े का, जवाहर नगर दुर्ग से।
0: और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके।
1: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से मैसेज ये गीत को सुनना चाहते हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा।
0: यही गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी।
1: और ये मैसेज हमें मिला है राजस्थान से, भेजने वाले हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत।
0: ये मैसेज भेजा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, अशद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी।
1: और नई बस्ती गंजडुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौस

पर सुनते हैं फिल्म भैरवी में कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण को अमित खन्ना के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: रिमझिम, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा मैसेज शामिल कर ली जाए, लेकिन कुछ श्रोताओं के मैसेज अभी भी रह गए ना।
1: जी जी, तो हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि वो नाराज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनके पास मौका है कार्यक्रम जिंदगी लाइव में हमसे जुड़ने का। समय रहेगा 12:05 पर, तो वो भी अपने मैसेजेस के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में विषय रहेगा मैसेज भेजने का, हिम्मत ना हारेंगे।
0: तो हिम्मत मत हारिएगा और जुड़िएगा कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। फिलहाल आज के गीत तुम्हारे की महफिल से पर्दा गिरने का वक्त आ गया है, तो दीजिएगा इजाजत मुझे यानी फरीना को
1: और रिमझिम बलूनी को।
0: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

श्रोताओं, आपने कार्यक्रम का पहला गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में, जिसे लिखा था नीरज ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लुटेरा से। आवाज है मोनाली ठाकुर की, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में जुर्म फिल्म का ये गीत। इसे संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे थे इंदीवर ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत जो आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है उत्तम सिंह और नदीम श्रवण ने। और श्रोताओं, इस फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान और साधना सरगम की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है हंगामा और इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म मैंने प्यार किया में। संगीत निर्देशन था राम लक्ष्मण का और गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली और देव कोहली ने। और श्रोताओं, अब जो गीत आपको कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं उसे आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है मोहब्बतें और संगीत दिया है जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद पक्षी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में ये गीत। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में, जिसे हमने लिया है फिल्म आर्यन अनब्रेकेबल से। इसे गीत को लिखा है और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म है अमर अकबर एंथोनी। इसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के फिल्म अमर अकबर एंथोनी के इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

हमारे श्रोता रात्रि 8 बजे सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, और रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तीनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत में आनंद लीजिएगा मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन का।

हम 7:32 पर श्रोताओं आपको एक बार पुनः बता दें कि संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 10:00। शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे UPPCL उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड का खुद से बढ़ने की समस्या और उससे बचने के उपाय। इस विषय पर शंभुनाथ उपखंड अधिकारी आदर्श नगर पिछलीघर नजीबाबाद से बातचीत रहेगी अंकित सैनी की। श्रोताओं समय याद रखिएगा शाम 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर। इसमें आप सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। साथ ही चर्चा का विषय रहेगा मछली तालाब की देखभाल।

युववाणी कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:15 पर। इसमें क्रम रहेगा कुछ खास है आज, गीत आपके नाम, बूस्टर और फिल्म संगीत। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के विषय पर जानकारी दी जाएगी।

लोकधारा में आनंद लेंगे श्रोता बनारसी लाल झोरी के गाए राजस्थानी लोकगीतों का आज दिन में 1:45 पर।

की गीतकार कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। और श्रोताओं, महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:15 पर। इसमें आज आप सुनेंगे लघु नाटिका बड़ी बहू। प्रतिभागी कलाकार हैं भावना अरोड़ा, दीप्ति माहेश्वरी, नंदिनी यूसुफा, सोहन शर्मा और जितेंद्र कुमार। निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुति रहेगी शोभित शर्मा की। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.67 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, जिसका श्रोताओं आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और हमें भी रहता है इंतजार कार्यक्रम में अपने श्रोताओं से जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, आज है शनिवार और शनिवार में ठीक 12:05 पर हम लेकर आते हैं अपने श्रोताओं का मन पसंद कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी साथी हूं मैं रिमझिम बलूनी। तो श्रोताओं, कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहले से ही उसे पाने से पहले ही हार मान बैठते हैं, या ये सोच लेते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, समय निकल चुका है, ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन श्रोताओं, हम ये भूल जाते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, यानी कि हमें जब अपने काम को, अपने सपनों को पूरा करने की लगन लग जाए, पूरा करने का मौका मिल जाए, तभी उस काम का सही समय होता है और वही समय है हमारे आगे बढ़ने का। क्योंकि सीखने की श्रोताओं कोई भी उम्र नहीं होती। और मुझे ऐसी ही दो लाइनें याद आ रही हैं कि अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, अगर वादा खुद से कर लिया जाए श्रोताओं, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हम गिरकर, थककर और उठकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बस आपको अपने इन कांटों भरे रास्तों में अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। और आज कार्यक्रम में जो विषय है, जी हाँ, वो है हिम्मत ना हारेंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन जी हाँ, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को बता देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर। तो नंबर नोट कर लीजिए श्रोताओं, क्योंकि आपको भेजने हैं कार्यक्रम में अपने मैसेजेस। तो इसके लिए हमारा नंबर है 9457078288। तो श्रोताओं, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको जिस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजना है वो नंबर है 9457078288। तो हम उम्मीद करते हैं अपने श्रोताओं से कि वो अपने मैसेजेस कार्यक्रम में ज़रूर भेजेंगे। और आपको हमने बता ही दिया है कि जो कार्यक्रम का विषय है, आज का जो विषय हमने लिया है वो है हिम्मत ना हारेंगे। तो श्रोताओं, आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और कार्यक्रम में मैसेजेस भेजने हैं श्रोताओं। देखिए, जीवन में परेशानियों से लड़ने के लिए श्रोताओं हिम्मत बहुत ही ज़रूरी होती है, या फिर हिम्मत को हथियार बनाकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप
इस तरह के जो भी आपके विचार हैं आप कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं, जो कि हम कार्यक्रम के माध्यम से अपने और श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। तो आपके मैसेजेस का श्रोताओं हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक हम कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है चक दे इंडिया, आवाज़ है हेमा सरदेसाई की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और हमने अपने श्रोताओं को मैसेजेस के लिए नंबर बता दिया था, और हमारे श्रोताओं के मैसेजेस आ चुके हैं, और जो नए श्रोता हैं वो भी मैसेजेस भेज सकते हैं। हम कार्यक्रम में बार बार अपने श्रोताओं को ये व्हाट्सएप नंबर बताते रहेंगे। तो ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये लिखते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। बहुत सुंदर बात इन्होंने अपने मैसेजेस के थ्रू हमारे श्रोताओं के लिए लिखी है कि अगर हमारे हौसले बुलंद हो, अगर हमारी हिम्मत बुलंद हो, तो फिर हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता। और कहते हैं ना कि जो हम ठान लेते हैं वो काम होकर ही रहता है। तो धन्यवाद आपका मैसेज के लिए, और भी बहुत सारे मैसेजेस कार्यक्रम में आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के। और ये मैसेज है शाही मार्केट सिहारा से, भेजने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी और अदीब चौधरी और कादिर चौधरी जी का। तो ये लिखते हैं कि लक्ष्य पाने के लिए हौसले की ज़रूरत, हिम्मत होनी चाहिए जी। आगे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, और इससे पहले ये कहीं बाहर थे, अपने देश से बाहर थे, और अब ये अपने ही देश में आ गए हैं, और यहाँ आकर ये आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े हैं। तो जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि चाहे हमारा लक्ष्य कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसे पाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है हमारी हिम्मत। अगर कोई हिम्मत हार जाता है तो फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता। और अगर उसके अंदर हिम्मत है, वो कितना भी हारा हुआ है, तो लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही रहता है। श्रोताओं, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम में उन मैसेजेस को आगे शामिल करेंगे श्रोताओं। और उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और अगर हमारे जो नए श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उन्हें एक बार फिर से अपना नंबर बता देते हैं। श्रोता कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपने मैसेज। और श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि जो भी मैसेज वो कार्यक्रम में भेजें वो कार्यक्रम से ही जुड़े हुए हों। और आज कार्यक्रम का विषय है हिम्मत ना हारेंगे। तो श्रोताओं, अगर आप भी अपने विचार श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, देखिए आपके विचार क्या पता किसी के जीवन में कुछ नया कर दें, कुछ सुधार उनके जीवन में हो जाए या फिर उन्हें कुछ नया रास्ता मिल जाए, तो हम यही कहेंगे श्रोताओं कि आप मैसेजेस कार्यक्रम में भेजते रहिए। और ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और ये लिखते हैं कि जीवन में भाग्य उसी का साथ देता है जो कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करते हैं। बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखकर भेजी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो काम करने का तरीका होता है, मेहनत करने का तरीका होता है या जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं हम उस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो हम परिश्रम कर रहे होते हैं कभी कभी वो सही दिशा में नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि हम वहीं पे हार मान जाते हैं और बस ये लाइन दोहरा देते हैं कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है श्रोताओं। होता क्या है कि अगर हम परिश्रम करें, कड़ी मेहनत करें और अपना हौसला बनाए रखें तो जो हमारा भाग्य है वो भी बदल जाता है। जी हाँ, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, इस बात पर पूरा यकीन करना है कि अगर हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पर डटे रहेंगे, अपने कार्य पर डटे रहेंगे तो हमें एक ना एक दिन जो हमारा ध्येय है, जो हम पाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर से मिल जाएगा। और अगला मैसेज जो हमें मिला है वो है जसपुर रोड दूल्हापुर से। भेजने वाले हैं ज़िला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद शमी अंसारी, मोहम्मद वारिश अंसारी और उनकी बेटी अलशिफा अंसारी। ये लिखकर भेजते हैं कि जिंदगी की हर चुनौती को पार कर सफलता हासिल करने के लिए कुछ प्रेरणादायक और ऊर्जावान विचार हम तक भेज रहे हैं कि रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है और हर असफलता एक नई शुरुआत है। जी, बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखी है कि असफलता से हमें हार नहीं माननी है बल्कि हमें सीखना है। हार का मतलब ये नहीं है कि खेल खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको एक नए और बेहतर तरीके से शुरुआत करनी है। जी हाँ, पानी की छोटी छोटी बूंदें भी लगातार गिरने से पत्थरों में भी छेद कर देती है, तो आपकी छोटी छोटी रोजाना की कोशिश ही आपको आपकी बड़ी सफलता दिलाएंगी। खुद पर श्रोताओं अटूट विश्वास रखिए। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, बहुत सुंदर मैसेज हमारे श्रोताओं को दिया है और उम्मीद करते हैं कि जो ये मैसेज हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके जीवन में भी ये मैसेज से कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आएगा। और श्रोताओं, होता भी है, कितने ही बार क्या होता है कि हमारे कुछ विचार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देते हैं।

ता है ना ऐसे। तो आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का श्रोताओं आपको अगला गीत। फिल्म का नाम है काला पत्थर और आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, उसका विषय है हिम्मत ना हारेंगे। और श्रोताओं, इससे जुड़े हुए मैसेज आप कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 9457078288। और कार्यक्रम में जो ये मैसेज हमें मिला है, ये भेजा है मदन गिरी जी ने, ग्राम गादरोना पोस्ट लंडोरा से। ये लिखते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा है, जो हार मान जाता है बस वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। हमें जीवन के सफर में आने वाली हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप डटकर मुकाबला करेंगे तो अवश्य ही आपकी जीत होगी। बस हमें जीवन में एक ही संकल्प रखना है कि हिम्मत नहीं हारेंगे, हर परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करेंगे। जी, बहुत सुंदर बात लिखकर भेजी है मैसेजेस के माध्यम से मदन गिरी जी ने, कि हमें चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हिम्मत हमें नहीं हारनी है ना श्रोताओं। और ये कार्यक्रम में जो मैसेज हमें मिला है, अनिल विनोचा जी, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और गीत अरोड़ा जी का ये मैसेज हमें मिला है। सबसे पहले ये नमस्कार लिखते हैं, तो नमस्कार आपको भी अनिल विनोचा जी। और ये आगे लिखते हैं कार्यक्रम से संबंधित, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, खाली नाम लिख के भेजा है। जी जी, आगे इनका मैसेज है। जी, ये मैसेज में लिखते हैं कि सच में हिम्मत जीवन जीने की बुनियाद है। जी बिल्कुल, हिम्मत अगर रहेगी तो जो हमारा जीवन है उसमें आने वाली मुश्किलें जो हमारे जीवन में आती हैं उन्हें हम टक्कर दे पाएंगे। हम जीवन में कई बार हारते हैं और निराश भी हो जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं। जीवन में समय समय पर समस्याएं आती रहती हैं, बस एक ही चीज़ है जो हमें जीत दिलाती है और वो है हमारी हिम्मत। लेकिन ये तभी साथ देती है जब आपके विचार पॉजिटिव होते हैं और हम अपने और अपने दोस्तों के दार्शनिक विचारों और अनुभवों से लाभ ले सकते हैं और प्रयास करते रहें। हिम्मत ही आपकी सफलता, आपको सफलता दिला सकती है, या सच या सही निर्णय और संकल्प भी आपकी हेल्प करता है। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता कार्यक्रम सुन रहे होंगे उन्हें भी हिम्मत मिल रही होगी ज़रूर से आपके मैसेजेस पढ़कर। तो जो हमारे श्रोता मैसेजेस भेज रहे हैं कार्यक्रम में, उनका धन्यवाद बहुत बहुत मैसेजेस भेजने के लिए। और भी हमारे श्रोता जुड़ सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ श्रोताओं, अगर हमारे जीवन में हमें जीत के साथ हार का सामना भी करना पड़ता है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारे जीवन में हार है वही हमें सिखाती है कि कैसे हमें दोबारा उठकर आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में जो मैसेज हमें मिला है वो मैसेज है गांव मीरामपुर बेगा तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से, और जिन्होंने ये मैसेज भेजा है वो है मोहम्मद कैफ, सैफ, ओवेस, उबेद, मोंटी भाई और डॉक्टर विजय, कासिम पेंटर और उनके परिवार के बहुत सारे लोग। और ये लिखते हैं कि गिरकर जो फिर उठ जाए वही असली इंसान है, मुश्किलों से लड़ना ही जीवन की पहचान है, रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत ना हारेंगे यही हमारा अभिमान है। बहुत सुंदर मैसेज इन्होंने लिखा है और इस जो ये मैसेज इन्होंने भेजा है, जो पंक्तियाँ इन्होंने भेजी हैं उन्हें पढ़कर ही हमारे अंदर तो बहुत हिम्मत आ गई है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें भी ये मैसेज पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैसेजेस कार्यक्रम में आ रहे हैं लगातार, और ये मैसेज हमें मिला है महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे। ये लिखते हैं कि अगर कितनी भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आए तो कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से आगे बढ़ना है। और आगे इन्होंने लिखा है कि पशु पक्षी हो चाहे कोई भी प्राणी हो, अगर हम उन्हें गौर से देखें तो वो कभी हिम्मत नहीं हारते। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, हम तो बुद्धिमान प्राणी हैं और हर काम हिम्मत से करनी चाहिए। इन्होंने मराठी में एक कहावत भी लिखी है जिसका अर्थ ये है कि कंकड़ को पीसो तो उसमें से भी तेल निकल सकता है। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि हमें और भी जो हमारे पास हमारे आमने सामने जो प्राणी रहते हैं जिन्हें हम देखते हैं उनसे भी हमें हिम्मत लेनी चाहिए। देखिए अगर हम देखते हैं कि चींटी को देखिए कितनी छोटी सी प्राणी है, कितना छोटा प्राणी है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारता, लगातार निरंतर मेहनत करता रहता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। और जो भी श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर से हम नंबर बता देते हैं। नंबर है 9457078288। और अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम जिंदगी लाइव। तो हमारे श्रोता मैसेजेस के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार कार्यक्रम में फिर से स्वागत। श्रोताओं, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव, और आज का जो विषय है वो है हिम्मत ना हारेंगे। और हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हम तक आ रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला सराय रफी चांदपुर बिजनौर से। भेजने वाले हैं मेहताब खान, शादाब खान, और ये लिखते हैं, मेहनत और लगन और हिम्मत, अगर जुनून है तो उसको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, है ना श्रोताओं। और हम ग्राम और पोस्ट राउ नंगली से भेजने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, और ये लिखते हैं कि हमें किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सदैव ईश्वर पर और

इन्होंने मैसेज करके हमें बताया है, और हमारे श्रोताओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रेरणा की बात है। और श्रोताओं देखिए, सबके जीवन का, जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग होता है, सबके लक्ष्य अलग होते हैं, सबके संघर्ष भी अलग होते हैं ना, और सभी को अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का हल भी अपने तरीके से ही करना पड़ता है। लेकिन बस हमें ज़रूरत होती है धैर्य की, तो परेशानियों से बिल्कुल नहीं घबराएं, धैर्य बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि जो हिम्मत है वही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। श्रोताओं, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत है तो हम उसे झेल जाएंगे, और अगर मुसीबत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत हार गए तो बस वहीं पे क्या होता है कि हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि देखिए, मदद भी करें, एक दूसरे की हेल्प भी करें, हिम्मत के साथ साथ हमें ये भी हिम्मत होनी चाहिए, हमें ये भी हौसला होना चाहिए कि हमें हर हालात में दूसरों की भी मदद करनी है ना, और अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिंदगी लाइव। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया।

हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट

0: नरसिम्हा और आलोक आराधे ने कहा कि वो इस मामले की करीब से निगरानी करेंगे और इसके बाकायदगी से जायजा लेंगे। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से यह भी पूछा है कि वो इम्तिहानी अमल को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन मोड में मुंतकिल कराने के लिए क्या इकदाम कर रही है। केस की अगली समाअत 27 जुलाई को होगी। मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एक वफद से मुलाकात की। मिस्टर नड्डा ने कहा कि मुलाकात मुस्बत रही। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी निजाम में इस्लाहात के मुतालबात को गौर से सुना गया। जनाब नड्डा ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 अहम मुतालबात किए और इम्तिहानी पेपर लीक होने को रोकने के लिए कुछ इस्लाहात का भी मशवरा दिया है। दोनों मरकजी वज़रा आज दोबारा कॉकरोच जनता पार्टी के वफद के साथ बातचीत करेंगे। रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा नौजवानों को मफादात को जहन में रखा है। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर बरवक्त कार्रवाई की और दोबारा इम्तिहान भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सड़कों पर आने के बजाय ऐवान में इस मामले पर बहस करे।
1: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराए लाखों परीक्षार्थियों के बाद। और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो इन युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत रहा है वैसा जो आपके पास सुझाव हो ताकि उसमें कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक ना हो।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले कांवड़ यात्रा और दीगर त्योहारों के सिलसिले में कल देर शाम एक आला सतह मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर अकीदतमंद की हिफाजत सहूलत और एहतराम अव्वलियन तरजीहात है। वजीर आला ने कहा कि हम आंगी में खलल डालने अफवाहें फैलाने मिलावट करने हद से तजावुज करने इंतशार फैलाने या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की दी कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में गोश्त और शराब की दुकानें बंद की जाए और हर दुकान पर ऑपरेटर का नाम वाज़े तौर पर जाहिर होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब रियासत के किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रही इसलिए हर जिले में इंतजामात पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों के कई अजला में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। मैं आपकी बहन भावना अरोड़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके महिला जगत कार्यक्रम में, और आशा करती हूँ कि मेरी सभी बहनें हमारे इस कार्यक्रम को सुनती होंगी और इससे जरूर लाभान्वित होती होंगी। तो चलिए बहनों,

आईवीएस दिवस मनाया जाता है, जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1978 में आईवीएफ तकनीक के माध्यम से हुआ था। यह उपलब्धि प्रजनन विशेषज्ञों डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स के अग्रणी प्रयासों से संभव हुई। बेनो, ये तो बात थी विश्व आईवीएस दिवस की, लेकिन वास्तव में न जाने कितने ही ऐसी महिलाएं हैं जो इस दर्द से गुजर रही हैं। विश्व आईवीएस दिवस के इस अवसर पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक लघु नाटिका, जो एक ऐसी ही महिला की कहानी को बताती है, उसके दर्द को बताती है। बहनों, वर्षों से समाज चुपचाप महिलाओं को यह बताता आया है कि वे तभी पूर्ण होती हैं जब वे मां बनती हैं, लेकिन यह लघु नाटिका इस धारणा को चुनौती देती है और हमें याद दिलाती है कि एक महिला का मूल्य कभी भी मातृत्व, विवाह या उस पर रखी गई अपेक्षाओं से पूरा नहीं होता, बल्कि एक महिला वह है जो पूरे परिवार को एक डोर से बांध कर रखती है, बहुत से किरदार एक साथ निभाती है, तो सिर्फ एक कमी मां की क्यों रह जाए? हम उसे, यदि वह मां न बन पाए तो हम उसे अधूरी क्यों माने, क्यों माने कि उसमें कोई कमी है? तो इसी विषय पर प्रस्तुत है आप सभी के लिए लघु नाटिका बड़ी बहू।

0: अरे लो भाई, बड़ी बहू भी आ गई। अरे भाभी, पहले आप मेरी बात सुनो।
1: हाँ हाँ, पर लेकिन पहले ये बता, तेरा एग्जाम कैसा हुआ?
0: वही तो बताना है भाभी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ।

0: देखो मैं क्या लाया हूँ।
1: ये क्या पापा जी, इतना सुंदर पालना, पर अभी इसकी क्या जरूरत थी।
2: छोटी बहू, एक तो तुमने आते ही इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, और ऊपर से हमारे घर में ये पहला फंक्शन, तुम्हारी गोद भराई, इनसे सब्र कहाँ होगा।
0: अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू सुनती हो क्या, जरा मेरी चाय तो बना देना।
3: हाँ हाँ पापा जी, अभी बनाती हूँ।
2: बड़ी बहू अभी तो आई हो तुम, थोड़ा आराम कर लो, चाय ये छुटकी बना देगी।
3: अरे नहीं मम्मी जी, पापा जी को तो मेरे ही हाथ की स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, और उनकी दवा का भी टाइम हो गया है, वो भी तो मुझे देनी है।
4: अरे क्या हुआ कनक, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी?
3: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं।
4: तो फिर इतना उदास क्यों लग रही है? क्या स्कूल में किसी से कोई बात हुई, या घर में किसी ने कुछ कहा है?
3: नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और घर में तो सब मुझे इतना प्यार करते हैं, पर काश जो खुशी पायल उन्हें दे रही है वो खुशी परिवार को हम भी दे पाते।
4: पर इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं, ईश्वर ने शायद हमारे भाग्य में संतान का सुखी नहीं दिया।

0: ये लीजिए पापा जी आपकी स्पेशल चाय, पर लाइए पहले आपकी शुगर चेक करती हूँ। अरे पापा जी आपकी शुगर तो थोड़ी बड़ी हुई आई है। जरूर कुछ मीठा खाया होगा आपने। आज से आपका मीठा बिल्कुल बंद। और प्लीज पापा जी समय से दवाइयां लीजिए आप।
1: मेरी सुनते ही कहाँ है ये बड़ी बहू, तुम ही देखो इन्हें, मैं तो थक गई हूँ।

0: समझाते समझाते।
1: डोंट वरी मम्मी जी, पापा जी का आज से मीठा बिल्कुल बंद, और दवा भी समय पर लेंगे, ठीक है ना पापा जी?
2: हाँ हाँ बेटा पक्का, लेकिन घर में खुशी ही इतनी बड़ी है, थोड़ा बहुत मीठा तो खाना बनता ही है ना।
1: वो बात तो ठीक है पापा जी, पर लेकिन आपको अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है, और मम्मी जी इस फंक्शन के चक्कर में आप अपनी दवा लेना मत भूल जाना, कहीं आप लापरवाही मत कर देना अपनी सेहत के प्रति।
0: हाँ हाँ मैं रखूंगी बेटा अपना ध्यान, और तू तो है ही हम सबका ध्यान रखने के लिए, पूरे परिवार को इतने अच्छे से संभालती है।
3: वाह भाई भाभी, आपका तो मजा ही आ गया। आज की गोद भराई का फंक्शन कितना अच्छा रहा, इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए आपको। वाह भाई, मजे तो आपके ही हैं। देखो ना मौसी कितनी प्यारी पिंक ड्रेस लाई है, जैसे उन्हें पता ही हो कि आपकी बेटी होगी।
4: बेटी ही होगी ज्योति, तुम देख लेना।
5: अरे ये तो बताओ, बेटी हुई तो क्या नाम रखोगे?
3: सोचना पड़ेगा, वैसे ये तो मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, मगर अगर बेटा हुआ तो उसका नाम ध्रुव भी रखूंगी।
0: बड़ी बहू तुम बताओ, अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे?
1: मैं काम करती हूँ, आप सबके लिए खीर लेकर आती हूँ।
4: ऐसे कैसे जा रही हो भाभी, नाम तो सुनो, मैं बताती हूँ। नाम रखेंगे कनिका, कनिका होगा हमारी बेटी का नाम, जो कनक भाभी की परछाई होगी, जो पापा जी की शुगर कंट्रोलर होगी, जिसके हाथ में मम्मी जी की बीमारी ठीक करने का जादू होगा, जो ज्योति की ट्यूशन टीचर होगी, और बुरे वक्त में इस घर की हिम्मत बनेगी, और मुझ जैसी नई बहू के लिए बड़ी बहन होगी और उसकी ताकत बनेगी। जहां भी रहेगी ना भाभी, सिर्फ खुशियां ही खुशियां बांटेगी आपकी तरफ।
6: तुम मुस्कुराए औरों की खुशी में, मगर क्यों महसूस करे एक कमी भी है, नमी तेरे और होठों पे चीख तभी से है। अरे मका को घर बनाया तूने, क्यों तू समझे खुद को अधूरी, और भी कई किरदार हैं तेरे जो बनाए तेरी पहचान पूरी।

तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे लघु नाटिका बड़ी बहू, जिसमें प्रतिभागी कलाकार थे भावना अरोड़ा, दीप्ति महेश्वरी, नंदिनी, यूसुफा खान, जितेंद्र और सुहन शर्मा। निर्देशक थे अंकित सैनी जी और प्रस्तुतिकरण था श्री शोभित शर्मा जी का। तो बहनों, चलिए कार्यक्रम के क्रम को बढ़ाते हैं और क्रम है आधी आबादी का, जिसमें हम बात करते हैं भारत की कुछ ऐसी महिलाओं और बेटियों के बारे में जिन्होंने वास्तव में भारत का नाम रोशन किया है। तो चलिए देखते हैं आज हम किस अपनी भारत की बेटी की बात करने जा रहे हैं।

बहनों, आज आधी आबादी में जो हम कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, ये कहानी है भारत की वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे की। सलीमा बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन अपने पैशन और मेहनत से उन्होंने न सिर्फ खुद नाम कमाया

0: देश का नाम भी रोशन किया। बहनों बात करें कि आखिर कौन है सलीमा टेटे, तो भारतीय महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे का जन्म 27 दिसंबर 2001 में हुआ। 2013 में सलीमा की प्रतिभा को पहचान मिली जब उन्हें झारखंड सरकार के हॉकी सेंटर में जगह दी गई। साल 2016 के अंडर 18 एशिया कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी मेहनत का नतीजा था कि 2017 में उन्हें भारतीय सीनियर महिला टीम की तरफ से बुलाया गया। बहनों डॉक्टर कलाम का कहना था कि सपने वह नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। झारखंड की बेटियों ने भी इसे सच कर दिखाया। झारखंड के सिमडेगा जैसे छोटे जिले से निकली सलीमा टेटे ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भी अपनी पहचान बनाई। सलीमा टेटे ने यह साबित किया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। झारखंड की यह खिलाड़ी बच्चों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने लाखों परेशानियां झेलकर भी बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस रखा। सलीमा ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक 2022 का हॉकी विश्व कप और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स में उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। बहनों आपको बता दें कि एशियन हॉकी फेडरेशन ने उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा है और एशियन हॉकी का एथलेटिक एम्बेसडर भी बनाया है। बात करें अगर सलीमा के संघर्ष की, तो उन्होंने बहुत सारे संघर्षों से गुजरकर ये मुकाम हासिल किया। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक छोटे से गांव बड़की छापर की रहने वाली सलीमा टेटे का सफर संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल से ही की। बचपन में उनके पास खेलने के लिए हॉकी स्टिक तक नहीं थी। बांस की खपच्ची से बनी स्टिक से खेलते हुए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत की। उनके पिता सुलक्षण टेटे भी हॉकी खिलाड़ी रहे, लेकिन वह अपने गांव से बाहर नहीं निकल सके। सलीमा की बड़ी बहन भी एक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि किसी एक के ही सपनों को उड़ान मिल सकती थी। सलीमा के परिवार ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी माँ ने रसोइये का काम किया और बड़ी बहन ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे।
1: मेरी बड़ी दीदी जैसे किसी के घर में जाके काम करती थी, फिर वो पैसा लाके देती थी, फिर मुझे मिलता था, तो ये चीज थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा एक इमोशनल फील को, जैसे मुझे बहुत ज्यादा सैड फील होता था कि मतलब किसी घर में मेरी दीदी जाके काम करती थी, फिर वहां से लाके पापा को देते थे, उसके बाद मुझे मिलता था, तो ये चीज मुझे अभी तक अंदर से चिपती है कि ये चीज मुझे करना है। आपको तो पता कर गरीबी आपके पास जो रियलिटी है वो है, मुझे कोई शर्म नहीं आती।
0: बहुत मुश्किल रहा सलीमा टेटे का यह सफर। बहनों सलीमा के घर के हालात कुछ ऐसे रहे कि जब साल 2023 की वह टोक्यो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में खेल रही थी तो उनके घर में टीवी तक नहीं था। हालांकि यह बात जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची तो उन्होंने सलीमा के परिवार को एक स्मार्ट टीवी और इन्वर्टर उपलब्ध कराया। सलीमा ने अपने प्रदर्शन में टोक्यो ओलंपिक्स में हर किसी का दिल जीत लिया। उनके खेल की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। सलीमा के साथ साथ झारखंड की कई बेटियां हॉकी में अपने राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। सिमडेगा जिले को हॉकी का गढ़ कहा जाने लगा क्योंकि यहाँ की बेटियां न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रही हैं।
2: सुश्री सलीमा टेटे देश की सबसे उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक है। उनकी उपलब्धियों में है 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक, 2023 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2022 में एशिया कप में कांस्य पदक। सुश्री सलीमा टेटे को हॉकी के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सलीमा टेटे।
0: बहनों ये थी सलीमा टेटे, जिन्होंने साबित किया कि अगर सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती।

तो बहनों, ये थी सलीमा टेटे, जिन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। और बहनों, अब क्रम है सजना है मुझे का।

बहनों, सजना है मुझे में, हम बात करते हैं सजने सवरने की। लेकिन आज हम अपनी बहनों के लिए एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करेंगे जिससे मुझे लगता है हमारी सभी बहनें बहुत परेशान हैं। बहनों, क्या आप भी बालों की झड़ने की समस्या से परेशान हैं और उसके लिए सर पर दही, अंडा, केराटीन, महंगे महंगे शैम्पू, सीरम, कंडीशनर और अलग अलग तरह के तेल, मल्टीविटामिन टैबलेट, इनमें से आपने भी कुछ ना कुछ तो जरूर ट्राई किया होगा। जी हाँ बहनों, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। तो आखिर इतना सब करने के बाद भी आपके बाल टूटना बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? अक्सर सबको कहते सुना है कि यह समस्या आम समस्या है और बरसात में तो बाल टूटते ही हैं। परंतु बहनों, ये एक आम समस्या नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और क्या आप जानते हैं कि यह समस्या आपके स्कैल्प में नहीं है और आप हमेशा स्कैल्प को ही सवारने सवारने में लगे रहते हैं, बल्कि बहनों इसकी मुख्य समस्या की जो जड़ है वो है आपका पेट। जी हाँ बहनों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा पर यह बात 100% सच है कि आपके हेयर फॉल तब होता है जब आपका खून गंदा हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं होता और ब्लड हमारे रोम छिद्रों तक नहीं पहुंच पाता और बालों को पोषण तत्व नहीं मिलते। पर बहनों, आखिर ये खून गंदा कैसे होता है? बहनों, जब हम अनहेल्दी फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, अधिक तला भुना, मिर्च मसालेदार, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, बिस्किट और भी ना जाने क्या क्या, तो यह हमारी पाचन शक्ति को बाधित करते हैं और हमारी आंतों पर चिपक जाते हैं जहां से ये सड़ना शुरू कर देते हैं और यही टॉक्सिन पदार्थ ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसी ब्लड के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। सिर के रोम छिद्रों तक भी यही टॉक्सिक पदार्थ पहुंचते हैं और जिसके कारण हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न होती है। तो बहनों, हेयर फॉल की समस्या से यदि आपको निजात पाना है तो सबसे पहले आपको अपने पेट को दुरुस्त रखना होगा। तो इसके लिए आखिर हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो बहनों, फास्ट फूड, चाइनीज खाना, अधिक मैदा व शुगर के बने उत्पाद, तेल, मिर्च मसालेदार आदि भोजन का सेवन ना करें। अपनी गट हेल्थ यानी पेट के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें। बाहर का खाना जहां तक हो सके अवॉइड करें। बालों को नियमित रूप से साफ करें और हरी पत्तेदार सब्जियां, रसदार फल, दूध, दही, पनीर आदि का सेवन जरूर करें। और हाँ बहनों, सबसे जरूरी बात, पेट में कभी भी कब्ज ना होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका पेट नियमित रूप से साफ होता हो। इसके अतिरिक्त तरबूज, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सीड्स का सेवन भी यदि आप करें तो ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो बहनों, ये थी कुछ जरूरी और बहुत अहम जानकारी बालों की समस्या को लेकर। निश्चित रूप से हमारी बहनें इस समस्या से जरूर लाभान्वित हुई होंगी। और बहनों, अब क्रम है आपके मनोरंजन का। तो चलिए बहनों, सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा। तो बहनों, इसके लिए आप हमें पत्र भी लिख सकती हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप हमें इसके बारे में बता सकती हैं। तो बहनों, पता नोट करने के लिए नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। इसके अतिरिक्त बहनों आप 8288। तो बहनों, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें अपने संदेशों को अवगत करा सकती हैं। तो चलिए बहनों, अनुमति दीजिए अपनी बहन भावना अरोड़ा को। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं लोकधारा के अंतर्गत बनारसी लाल झोरी के गाए राजस्थानी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत बनारसी लाल झोरी के गाए राजस्थानी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे लोकधारा के अंतर्गत बनारसी लाल झोरी के गाए राजस्थानी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency, NTA, has terminated 47 officials from service. The Madhya Pradesh High Court has designated four special fast-track courts to hear examination paper leak and related malpractice cases, directing them to complete trials within 3 months of the filing of charge sheets. Acting Chief Justice Vivek Rusia designated district and additional sessions courts in Bhopal, Indore, Gwalior and Jabalpur as special courts under the Lok Pariksha Anuchit Sadhano Ka Nivaran Adhiniyam 2024 and related provisions of the Bhartiya Nyay Sanhita. Delhi police has said that it is continuously monitoring social media handles amid the ongoing protest over the NEET UG paper leak issue. Briefing media in New Delhi today, DCP Central Rohit Rajbir Singh said that Delhi police is sharing every information on fake news, AI and deepfake videos, edited clips and misleading posts through its social media handles. DCP Central Delhi also informed that in line with the government's commitment to combat paper leaks and irregularities in various competitive exams, the Delhi police has formed a special task force within the crime branch. Leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, in a press conference in New Delhi today, demanded the removal of Education Minister Dharmendra Pradhan from the cabinet. The Congress leader also demanded that those allegedly responsible for the assault on students during the protest should be held accountable. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has strongly condemned the alleged attack on journalists during a rally organized by several left organizations at Central Kolkata yesterday in protest against the NEET question leak. He said those responsible would face strict action. Making a statement in the State Assembly today, the Chief Minister said 7 cases have already been registered in connection with the incident and around 70 people have been identified. He said the accused have been booked under the state's newly enforced law. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. In Ladakh, 2-day commemorative events marking the 27th Kargil Vijay Devas began today at Dras. Kargil Vijay Devas is celebrated on the 26th of July every year to mark the nation's victory over Pakistan in Operation Vijay during the 1999 Kargil War. The Yudh Sansmaran program was held at Lamuchen Viewpoint. The celebrations will continue today. Sandhya.
1: War Memorial at Dras is wearing a festive yet solemn look as preparations for the 27th Kargil Vijay Devas celebration have been completed. The two-day commemorative event begins today, while tomorrow, Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. The celebration stands as a tribute to the unmatched valor, courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Force during the 1999 Kargil War. For Akashwani News, Zainab Ali from Kargil.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed that every day, every hour, every minute and every second spent in the House should be used to strengthen democracy. Mr. Radhakrishnan was addressing the inaugural ceremony of the two-day orientation come training program for the newly elected and nominated members of the Rajya Sabha in New Delhi.
2: I always say in the House, debates, discussions and even disruptions, it must be always lead to a final decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required. If we delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision, or that becomes no decision. This is where we need to have knowledge of the rules and procedures of the House towards contributing effectively through debates.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla today paid floral tributes to former Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee on his birth anniversary. On the occasion, members of Parliament, former members of Parliament and other dignitaries also paid floral tributes to Somnath Chatterjee. Prime Minister Narendra Modi will interact with the participants of Viksit Vibrant Village Program 2026 tomorrow through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The sacred city of Puri in Odisha is set to witness one of the most magnificent rituals of the annual Rath Yatra this evening, as Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra will be adorned in the resplendent Suna Besha or golden attire. Lakhs of devotees from the country and abroad are expected to gather along the grand road to witness this magnificent spiritual spectacle. We have a report.
3: The holy city of Puri is immersed in an atmosphere of profound devotion and festivity as the revered Suna Besa or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the grand road. During this time honored ritual, the Shivling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials, symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
0: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on host Zimbabwe in the second T20 international of the three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Sameh 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jhandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates four special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on host Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
4: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: सीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कॉकोज जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ AI का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
8: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
4: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज वन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
9: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक ही गीतकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही गीतकार में। साथियों, जिनके लफ्ज दिल को छू जाएं और जुबां पे चढ़ जाएं, जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक जादुई लफ्ज लिखने वाले के बारे में, जिनकी कलम से निकले हर नगमे हर दिल पर राज करते हैं। तो श्रोताओं तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है कुछ खास। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ऐसे गीतकार, कवि और संवाद लेखक की, जिनका नाम है मनोज मुंतशिर। जी हाँ, इनका जन्म 27 फरवरी साल 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के गौरीगंज में हुआ था। मनोज मुंतशिर ने अमेठी के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री ली। श्रोताओं, उनके पिता किसान और माँ एक अध्यापिका थी। मनोज मुंतशिर ने स्कूल के दिनों से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनके दोस्त उन्हें मुशायरा लेकर जाते, जहां वो अपनी कविताएं सुनाया करते थे। और श्रोता, जब मनोज का ग्रेजुएशन पूरा हो गया, तब साल 1999 में काम की तलाश में वो मुंबई चले गए। और उस समय पे उनकी जेब में मात्र 700 रुपये थे। तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने। फिल्म है बादशाहो और आवाज़ है नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान की, और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कार्यक्रम में। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं गीतकार मनोज मुंतशिर की। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जब मनोज यानी कि मनोज मुंतशिर मुंबई पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई भजन सम्राट अनूप जलोटा से। और ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई, इसके लिए भी उन्होंने बहुत दौड़ भाग की, बहुत परेशानियां उन्होंने झेली, भूखे रहे, सड़कों पे रहे, बहुत संघर्ष उन्होंने किया। और जब वो उनसे मिले, किसी तरह उनसे उनकी मुलाकात हुई अनूप जलोटा जी से, तो उन्होंने मनोज जी को एक भजन लिखने को कहा। और मनोज मुंतशिर ने इससे पहले कभी भजन नहीं लिखा था, उन्होंने कविताएं लिखी थी, उन्होंने गीत लिखे थे, लेकिन उन्होंने भजन इससे पहले नहीं लिखा था। लेकिन उस समय क्या था, उन्हें थी पैसों की ज़रूरत, तो वो भजन लिखने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने उसी समय एक भजन लिखकर अनूप जलोटा को दिखा दिया, और उन्होंने उस भजन के लिए मनोज मुंतशिर को 3,000 का चेक दिया, जो मनोज मुंतशिर की पहली कमाई थी। और श्रोताओं, अगर पहली कमाई जब किसी को भी मिलती है तो कितनी खुशी होती है ना। और उस समय पे जब उन्हें उसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन श्रोताओं, अभी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था, वो कोशिश कर रहे थे और कोशिश करते रहे, डटे रहे मैदान पर। और उन्होंने श्रोताओं, फिल्मों के लिए गीत लिखने से पहले टीवी शो के लिए स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग लिखे, और उनके स्क्रिप्ट्स, उनके डायलॉग, उनकी कविताएं पसंद भी किए गए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा है, और फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू। आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की, और संगीत दिया है नुसरत फ़तेह अली खान ने।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और इसमें हम बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर की, और साथ ही सुना रहे हैं हम उन्हीं के लिखे हुए कुछ गीत। तो श्रोताओं, मनोज मुंतशिर की जिंदगी में संघर्ष चल रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत की और साल 2005 में आई फिल्म यू बॉम्सी एंड मी के गीत लिखकर बतौर गीतकार अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की। और इस गीत में उन्होंने चार इस फिल्म में उन्होंने चार गीत लिखे। और श्रोताओं, आपको मनोज जी से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताते हैं कि मनोज मुंतशिर ने पहला गीत साल 2004 में आई फिल्म रंग रसिया के लिए लिखा था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण फिल्म लगभग एक दशक बाद साल 2014 में रिलीज हुई, और उनके वो गीत इतने लंबे इंतजार के बाद सभी के सामने आए। और फिल्म एक विलन साल 2014 में उनकी रिलीज हुई थी, और उनका लिखा हुआ गीत गलियां, जिसे लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं, तो इस गीत से उन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली थी, बहुत सराहा था लोगों ने इस गीत को। तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है एक विलन और आवाज है अंकित तिवारी की।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर की, और मनोज मुंतशिर के लिखे गीतों में श्रोताओं इतनी गहराई है कि सुनने वाला व्यक्ति उस गीत में खो जाता है। उनके गीत सरल होते हैं, लेकिन बेहद भावुक और असरदार शब्दों में उन्होंने अपने गीत लिखे हैं। और अगर बात करें देशभक्ति गीतों की, तो उन्होंने ऐसे गीत लिखे जिन्हें सुनकर हर देशवासी देश प्रेम के रस में ओतप्रोत हो जाता है। जी हाँ श्रोताओं, एक उन्होंने केसरी फिल्म का ऐसा ही गीत

लिखा है जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज है बी प्राक की और संगीत है आर को का। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा है और फिल्म का नाम है केसरी।

श्रोताओं, उनके गीतों में देश प्रेम और जज्बातों के सागर उमड़ पड़ते हैं। वो अल्फाजों के जादूगर हैं। उन्होंने अपनी कलम से गीतों को एक नया आयाम दिया है, जिससे हर सुनने वाला खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाता है। और उन्होंने कई ऐसी प्रसिद्ध गीतों को लिखा है जो फिल्म है, जैसे केसरी, कई गीत जो अभी आपने सुना, एक विलन, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, हाफ गर्लफ्रेंड, कबीर सिंह, बाहुबली, साइना, ऐसी फिल्मों के कई गीत गाकर उन्होंने श्रोताओं के दिलों पर राज किया है। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत,

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए योजना की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना श्रोताओं, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्रोताओं, हमारे देश में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा कारीगर, मोची, सफाई कर्मी और अन्य श्रमिक। ऐसे लोगों के पास अक्सर नियमित पेंशन सुविधा नहीं होती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 या उससे कम हो, इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही वह IPFO, ESIC या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS का सदस्य न हो और आयकर दाता न हो। इस योजना में श्रमिक को अपनी आयु के अनुसार हर महीने 55 से 200 रुपए तक का अंशदान करना होता है। सबसे खास बात यह है कि श्रमिक जितना अंशदान करता है उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी जमा करती है, यानी सरकार भी बराबर की भागीदारी बनती है। जब लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब उसे हर महीने न्यूनतम 3,000 की पेंशन मिलती है। यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी का निधन हो जाता है तो उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना में नामांकन के लिए आधार कार्ड, बैंक या जनधन खाता और मोबाइल नंबर आवश्यक होते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर या उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS ट्रेडर्स की। दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रोताओं, देश में लाखों छोटे व्यापारी और स्वनियोजित लोग अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नौकरी पेशा कर्मचारियों की तरह उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन नहीं मिलती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी पात्र दुकानदार, व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए तक हो। योजना में शामिल होने के बाद लाभार्थी को अपनी आयु के अनुसार प्रतिमाह 55 रुपए से 200 रुपए तक का अंशदान करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी जितनी राशि जमा करता है उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करती है। जब लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब उसे हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान लाभार्थी का निधन हो जाता है तो उसके जीवन साथी को 50% यानी 1,500 रुपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आवश्यक व्यापारी संबंधी जानकारी की आवश्यकता होती है। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। श्रोताओं, छोटी सी मासिक बचत भविष्य में बड़ा सहारा बनती है। यदि आप स्वयं व्यापार करते हैं, कोई छोटी दुकान चलाते हैं या स्वरोजगार से जुड़े हैं तो इस योजना के माध्यम से जुड़े और पात्र होने पर इसका लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बुढ़ापा हर व्यक्ति का अधिकार है और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। सौरभ त्यागी पुत्र महेंद्र त्यागी उम्र 24 वर्ष, डबारसी थाना आदमपुर जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश से 30 मार्च 2024 से लापता है। सौरभ त्यागी का रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 5 इंच, चेहरा गोल, आंख नाक सामान्य, हल्के हरे रंग की टी शर्ट व क्रीम कलर की लोवर व चमड़े की चप्पल पहने हैं। उसकी ठोड़ी के ऊपर तिल का निशान है। यदि किसी व्यक्ति को सौरभ त्यागी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को इस नंबर पर जानकारी देने का कष्ट करें।

नंबर है 9454403668। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9454403668। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे और राष्ट्रीय पत्रिका विज्ञान भारती रात्रि 9:30 पर ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे, ये कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा मोहन गुप्ता के गाए भजन। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनेगा शंभुनाथ उपखंड अधिकारी आदर्श नगर बिजली घर नजीबाबाद से अंकित सैनी की बातचीत। विषय होगा UPPCL उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोन का खुद से बढ़ने की समस्या और उससे बचने के उपाय। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे लोक गीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। युवाणी कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर क्रम होगा कुछ खास है आज गीत आपके नाम और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। द आकाशवाणी पॉडकास्ट में रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे प्रख्यात साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल को। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कल रात्रि 10 बजे। और प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम मन की बात आप सुनेंगे कल सुबह 10:55 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे सुनिएगा ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विषय में। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा कुछ खास है आज झलकी और साथ ही अपन आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर सुनेगा डॉक्टर आकाश सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग RSMPG कॉलेज धामपुर से जितेंद्र कुमार की बातचीत। विषय होगा गन्ना फसल में पोका बोइंग व लाल सड़न रोग के कारण लक्षण व नियंत्रण। छाया गीत शाम 6:55 पर। और सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर सुनेगा हेमंत पाठक के गाए गीत अदबी दुनिया के अंतर्गत। कल शाम 7:50 पर आप सुनेंगे सुधीर कुमार परवाज से कलाम। गीत संध्या कार्यक्रम कल रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुन रहे होंगे आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम युववाणी को। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके अपने साथी सिमरन कौर।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सिमरन के साथ हूँ आज मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट उज्मा।
0: दोस्तों, आज है सैटरडे और हम सभी का फेवरेट डे। पूछो क्यों? क्योंकि आज हम सभी को खुशी होती है आने वाले संडे की।
1: बिल्कुल, जिसमें हम करते हैं खूब सारा रेस्ट एंड एंजॉय और खाते पीते घूमते हैं, जिससे दिल खुश हो जाता है। भाई, दिल तो खुश होगा ही, क्योंकि पूरे हफ्ते की भाग दौड़ और थकान के बाद संडे आराम के लिए जो मिलता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम बनाते हैं आपकी इस सैटरडे इवनिंग को और भी ज्यादा शानदार
1: सेगमेंट गीत आपके नाम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट गीत आपके नाम
0: और सुनते हैं उसका पहला प्यारा सा गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आज है 25 जुलाई, यानी के आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट डे, यानी के विश्व भ्रूण विज्ञान दिवस। क्या आप जानते हैं ये दिन विशेष होता है किस लिए? इसलिए IVF यानी के इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन और अन्य आधुनिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से उन दंपतियों की मदद करते हैं जो लंबे समय से माता पिता बनने का सपना देख रहे होते हैं।
4: बिल्कुल, और इस दिन का इतिहास भी बेहद खास है क्योंकि 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली IVF टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन का जन्म हुआ। ये चिकित्सा विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
3: और इसी याद में हर वर्ष 25 जुलाई को वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे या वर्ल्ड IVF डे मनाया जाता है।
4: दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान केवल नई खोज ही नहीं करता बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद और खुशियां भी लाता है।
3: एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपने ज्ञान, मेहनत और संपर्ण से लाखों परिवारों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इस अवसर पर हम सभी भ्रूण वैज्ञानिकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े उन सभी विशेषज्ञों का दिल से सम्मान करें जो अपने कार्य से नई जिंदगी की शुरुआत करने में अपना योगदान देते हैं।
3: हर नई जिंदगी के पीछे समर्पण, विज्ञान और उम्मीद की एक कहानी होती है। विश्व भ्रूण दिवस विज्ञान उन सभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट को समर्पित है जो लाखों परिवारों के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम आपको अपने सेगमेंट गीत आपके नाम का सुनवाते हैं ये अगला प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत। अब हम अपने दोस्तों को अगला गीत सुनवाने से पहले हम बता देते हैं कि हमारे दोस्तों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं, वो हमें फरमाइश भेज रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जो हमें अपनी फरमाइशें भेज रहे हैं। तो हमें दोस्त सिमरन ने मैसेज मिला है, मेहरा दरवाज़ा एटा से भेजने वाले हैं नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। इसी के साथ हमारे अगला जो मैसेज मिला है वो हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। और अगला मैसेज हमें मिला है वो बताएंगी सिमरन।
2: अगला मैसेज हमें मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिक वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और इसी के साथ हमें अगला मैसेज मिल चुका है जिला मुरादाबाद दुलापुर ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह से।
1: तो चलो सिमरन, क्यों ना अपने इन प्यारे से साथियों की पसंद पर प्यारा सा गीत सुनवा ही दिया जाए।
2: बिल्कुल, हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम के अंदर।
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: वाह क्या गाना था ना दोस्तों, ये मौसम का जादू है मितवा। सच में इस गाने में जादू ही है। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज, लता सलमान और माधुरी की जोड़ी, और 90 के दशक की वो प्यारी यादें, सब कुछ एक साथ महसूस हो गया ना। तो चलिए हमें भी कुछ महसूस हो रहा है। हमारे साथियों के जो मैसेजेस है वो लगातार हमें मिल रहे हैं, तो देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं। तो ये दोस्तों में मैसेज मिला है देवशंकर तामुरिया जी का, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, और पोता मास्टर अल कबीर। और ये हमें भेज रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डिंडो डोंडी लोहारा बालोदा छत्तीसगढ़ से। अगला मैसेज हमें मिला है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं अनिल कुमार गोड के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता गॉड के, वैष्णवी गॉड के, गायत्री गॉड के और यज्ञेश गॉड के। तो दोस्तों कहते हैं ना, म्यूजिक में वाकई जान भरी होती है, और वो हम में एक अलग ही जो है एक्टिवनेस पैदा कर देता है ना। और अब धीरे धीरे शाम भी हो रही है ना सिमरन,
1: बिल्कुल
0: तो रात का अंधेरा होने वाला है और बादलों के पीछे छुपने वाला है, क्या छुपने वाला है,
1: चांद
0: बिल्कुल चांद छुपने वाला है और दिल में प्यार छिपने वाला है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको अगला गीत हमारे दोस्तों की फरमाइश पर कौन सा सुनवाने वाले हैं। तो चलिए सुन लेते हैं अगला गीत, क्यों सिमरन।
1: बिल्कुल। और ये गाना जो कि रोमांस की परिभाषा बदल देगा, तो चलिए दोस्तों सुनवाते हैं आपको ये अगला प्यारा सा गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: सुनिए जी।
4: हाँ जी, बोलिए।
3: एक बात पूछनी थी आपसे।
4: एक क्यों, दो पूछो, हम तो दो का भी जवाब दे देंगे।
3: क्या मैं मोटी लग रही हूँ?
4: अरे ये किसने कहा तुमसे? तुम तो एकदम गूगल की तरह हो।
3: गूगल की तरह? वो कैसे?
4: भाई हर बात का जवाब खुद ही ढूंढ लेती हो।
2: यहाँ मजा आ गया।
5: दोस्तों, हमारे दोस्तों के जो मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं, तो हमें अगला मैसेज मिला है रेडियो श्रोता संघ से, और भेजने वाले हैं अनिल कुमार गोड के वैशाली, अनिल प्रजापति गोड के, वैष्णवी गोड के, गायत्री गोड के और यज्ञेश गोड के, हमारे अगले साथी हैं जिन्होंने मैसेज भेजा है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी के साथ हमें एक और मैसेज मिला है, जो मिला है जनकपुरी सहारनपुर से। भेजने वाले हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोज डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो और विलेज डिकैस्ट्रो। दोस्तों, अगला गाना जिसकी फरमाइश हमें लगातार आ भी रही है और काफी टाइम से आ रही है, तो आज हमने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को यही वाला गीत सुनाया जाए। क्यों सिमरन?
3: बिल्कुल।
5: तो दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं उससे आपका मूड वाकई चेंज हो जाएगा, क्योंकि गाने में कुछ लाइनें यूं जो है, तुम जो ना आते तो अच्छा था,
3: आके ना जाते तो अच्छा था,
5: पर भाई आ गए हो तो हमको दीवाना क्यों कर गए। वैसे ऐसा है नहीं, वो मैंने बोल दिया है सिमरन, लेकिन हाँ एग्जैक्ट सेम लाइनें तो नहीं है, लेकिन जब वो ये लाइनें सुनेंगे तो हर किसी को अपना अपना कोई ना कोई क्रश याद तो जरूर ही आ जाएगा।
3: बिल्कुल, और वो फेस दिमाग में घूमती रहेगी।
5: बिल्कुल, और ये गाना है जो 2006 में आया था। तो चलिए, अब इतना हिंट तो दे ही दिया है, बाकी हिंट आपको आगे गाने में मिलते रहेंगे, और गाना सुनते फिर तो आगे हिंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों सिमरन?
3: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, सुनवाते हैं हम आपको ये प्यारा सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
3: गुड मॉर्निंग मैम।
2: आज मैं आप लोगों से ना कुछ सवाल पूछूंगी।
3: ओके मैम।
2: अच्छा चिंटू, चलो तुम बताओ कि जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
4: नहीं पता मैडम।
2: अरे चिंटू, जो भी आता है वही बता दो।

0: है मैडम।
1: यहाँ मजा आ गया।
2: तो दोस्तों, हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। तो ये जो हमारे दोस्त हैं, अगले ही इन्होंने हमें मैसेज भेजा है, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। और भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से। और भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। अगला मैसेज हमें मिला है जलालाबाद वैसे से, भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल पिर्रा दशानी और निमित आहूजा। सारे दोस्तों, हमें अगला मैसेज मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से, भेजने वाले हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया रीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फाहिम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुरेश चौहान। तो दोस्तों, चलिए इनकी फरमाइश पर सुनवाते हैं हमारे गीत आपके नाम सेगमेंट का
0: ये
2: अगला
0: एक
2: प्यारा सा
0: और
2: गीत।
0: प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है, आपको खत भेजने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नोट करना है हमारा पता। और हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467 63 पर। और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब अपनी साथी उज्मा और सिमरन को दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट कर

0: दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
0: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी, माफ कीजिएगा कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार
1: और आपके भैया हिमांशु रंजन की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और हिमांशु भाई, क्या हाल चाल है थारे?
1: बस भैया सब राज्य खुशी। और भैया देखो, आज जब हम आ रहे थे ना भैया स्टूडियो, तो भैया बादल बड़ी तेज आया।
0: देखो भैया, बादल तो आया मगर ऐसी बारिश हुई नहीं जैसे चाह रहे थे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, ऐसा लग रहा है कि भैया इस समय बादल नाराज।

0: ले भैया
1: भैया पहले से जैसी बरसात जा हो ना रही है, कहीं बूंदाबांदी हो जा, कहीं हल्की हो जा, कहीं तेज हो जा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बताओ भैया कैसी चल रही थारी खेती बाड़ी?
0: भैया खेती बाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। और भैया देखो धान लगा के भैया हम तो निमट गए।
1: अच्छा भैया।
0: हाँ, और भैया अब गन्ने में बंधाई कर रहे हैं भैया हम। तो भैया यो काम, दोनों काम बहुत जरूरी है और हमारे किसान भाई भी भैया कर ही रहे होंगे।
1: बिल्कुल भैया, देखो हमारे जो किसान भाई हैं, बरसात से पहले अपने गन्ने की बंधाई कर लेनी चाहिए। एक तो भैया उससे फायदा होता है कि जो हमारा गन्ना नीचे नहीं गिर पाता।
0: बिल्कुल।
1: और जब नीचे नहीं गिर पाता तो सीधा सीधा उसका जड़ का विकास अच्छे से होता है और गन्ना हमारा सीधा खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल। और भैया देखो गन्ना जितना सीधा खड़ा रहेगा भैया, उसकी बढ़वार यूं कह करें बढ़िया हो करें।
1: बिल्कुल भैया,
0: है ना। तो इस समय भैया हमारे किसान भाई गन्ने की बंधाई का काम कर सके हैं, मिट्टी चढ़ाई का काम कर सके हैं, और भैया अपने खेत की निगरानी तो हमारे किसान भाई भैया कर ही रहे होंगे।
1: बिल्कुल भैया, देखो निगरानी हमें जरूरी है क्योंकि बीमारी से पहले बचाव जरूरी है। तो इसलिए भैया फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें समय समय पर निगरानी करनी जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो भैया अंकित, एक बात और हम बताएं अपने किसान भाइयों को कि हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ भैया और बहुत सारे व्यवसाय करते हैं। जैसे भैया हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, है ना भैया। और भैया कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो भैया मछली पालन भी करते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया यो समय ऐसा चल रहा है कि इस समय भैया हमें जो मछली है ना, यानी कि जो मछली के तालाब हैं, उसकी देखभाल बड़े अच्छे तरीके से करनी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, देखो बरसात का पानी, बरसात का समय है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें हमने मछली पाल रखी है तो पानी ज्यादा हो जाता है और पानी ज्यादा होने के से जो मछलियां हैं वो बाहर निकल जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उससे हमें नुकसान होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल भैया, ध्यान रखेंगे तभी तो भैया लाभ मिलेगा। और भैया एक बात और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि भैया देखो जो मछली हमारे जो किसान भाई हैं जो पालन करते हैं मछली का, तो उसके लिए भैया तालाबों की देखभाल अगर हमारे किसान भाई करेंगे सही समय पर, तो भैया उससे लाभ बहुत मिलेगा उन्हें।
1: बिल्कुल भैया, उसके साथ साथ भैया जो हमारे तालाब में पानी है, जल है, उसकी गुणवत्ता का वो ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, गुणवत्ता का ध्यान रखना। उसमें भैया पानी अगर गंदा हो जा तो भैया उसका भी ध्यान रखना हमें।
1: बिल्कुल।
0: और एक बात का और ध्यान रखना अंकित भैया कि जो तालाबों की जो मेड़ है, यानी कि जो उसके आसपास चारों किनारों पर भैया जो यूं कह रहे हैं मेड़ जिसे हम कह रहे हैं, तो भैया उसकी जांच करनी जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर दरार आ गई या भैया कहीं से कटाव हो रहा हो तो भैया उसे सही से बांध दे मैं।
1: बिल्कुल भैया। और भैया उसके साथ साथ जो हमारे तालाब में हम मछली पालन कर रहे हैं भैया, उसमें खरपतवार नियंत्रण हमें करते रहना है।
0: बिल्कुल करते रहना। साथ ही भैया जो अतिरिक्त पानी हमारे खेत में जाएगा भैया, उसकी निकासी का भी प्रबंध हमें करना।
1: बिल्कुल। और भैया हमारे जो मछली के तालाब में कोई रोग ना हो, कोई कीट ना हो जो हमारी मछलियों को हानि पहुंचाए, उसकी हमें देखभाल करनी है और समय समय पर उसका जो जांच करनी है और भैया उसका उपचार भी करना है।
0: बिल्कुल, उपचार करना। और भैया देखिए इस समय जो भैया मुख्य बात आती है वो आती है भैया आहार की। क्योंकि भैया चाहे आहार हम अपने पशु को दे रहे हों, चाहे भैया हमने जो भी अन्य व्यवसाय कर रखा है, हम मछलियों की बात कर रहे हैं, तो भैया संतुलित आहार अगर हम अपने मछलियों को देंगे, मछली तालाब में डाल लेंगे, तो भैया जो मछली की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: है ना। अत्यधिक भोजन देने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ भोजन भैया पानी को दूषित करता है।
1: बिल्कुल भैया। और हमें बिना भी किसी वैज्ञानिक सलाह के हमें कोई भी दवाई का प्रयोग हम अपने मछली के तालाब में नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और भैया एक बात और अंकित भैया कि इस समय, यानी कि जो ये समय चल रहा है बरसात का चल रहा है, तो बरसात में बैक्टीरिया, फफूंद और परजीवी रोगों का भैया खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भैया तालाब की नियमित निगरानी करनी चाहिए, और यदि भैया हमारी कोई मछली सुस्त दिखाई दे रही है या भैया शरीर पर उसके कोई घाव है या सफ़ेद धब्बे या भैया असामान्य व्यवहार वो करती दिखाई दे रही है, तो भैया उसका तुरंत जो है उपचार कराना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवाइयों का उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि भैया मछलियों की तालाब में ना नियमित देखभाल, स्वच्छ जल भैया, संतुलित आहार अगर हमारे किसान भाई देंगे तो उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और भैया वैज्ञानिक तरीकों से अगर हम तालाब की देखभाल करेंगे, किसान भैया हमारे जो किसान भाई हैं बरसात में, जो बरसात के मौसम में भैया जो नुकसान होता है उससे तभी बच सकते हैं जब भैया वो वैज्ञानिक तरीकों को अपने खेत में अपनाएंगे।
1: बिल्कुल भैया, उससे लाभ भी मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: और भैया देखो बातों आज एक चीज तो भूल ही गए।
0: वो क्या भैया?
1: भैया आज दिन बताओ, दिन कौन सा?
0: अरे भैया दिन आज शनिवार का है। और भैया हमारे किसान भाई देखो जानना ही है कि हम शनिवार के दिन लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी लेकर किसान भाइयों के सामने आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भैया देखो किसान भाइयों हमें फोन करेंगे किसान भाई, तो उसके लिए भैया हमारे जो फोन नंबर है वो भी किसान भाइयों को बता दो।
1: बिल्कुल भैया, हमारा मोबाइल नंबर है 94-57-07-82-88।
0: बिल्कुल। और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो भी जरा किसान भाइयों को बता दो।
1: वो है भैया हमारा 0-13-41-230-105।
0: बिल्कुल। तो भैया जब तक हमारे किसान भाई हमें फोन करें, तो अंकित भैया क्यों ना कुछ हम ये जरूरी काम कर लें।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो आइए सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल भैया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिमांशु भैया
3: जी, भैया
2: संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिए। और भैया ज्यादा देर ना करते हुए अपना शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम
3: हेलो लोक मंजरी।
2: और भैया जो हमारे

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के लोकगीतों वीरांगनियों के फरमाइशी सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया हिमांशु रंजन।
1: और मैं हूं आपका भैया अंकित कुमार।
0: तो अंकित भैया, देखो कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया,
0: भैया हमारे किसान भाई अब से लेके और भैया
1: 6:45 तक भैया हम
0: जी
1: फोन कर सकते हैं और भैया अपनी मनपसंद की कोई भी रागनी सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो इसके लिए भैया हमारे नंबर किसान भाइयों को बता दो।
1: बिल्कुल भैया, हमारा मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88 और हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 0-43-240-130-105, हमारा लैंडलाइन नंबर है।
0: बिल्कुल। और भैया देखो, इधर तुमने नंबर बताया और भैया उधर कॉल आ गई। देख लेते हैं भैया हमारे पहले कॉलर कौन है।
1: बिल्कुल भैया, हेलो लोक मंजरी
2: हाँ जी भैया, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं
2: जी? बेर से बोल रहे हैं, रविपाल
1: जी। कहाँ से?
2: बेर पड़ता है, बेर थाना शिवाला कला में।
1: अच्छा, थाना शिवाला कला जी। तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज आप? हम
2: रागी सुनवा दो
1: जी। कौन सी?
2: 20 आदमी एक कुटुंब में।
1: जी जी और बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है?
2: मौसम तो साहब इस बार बरसात कम ही दिखाई दे रही।
0: अच्छा, और खेती बाड़ी में क्या काम चल रहा है आपके यहाँ?
2: मिट्टी उत्ती तो चलवा दी, अभी गन्ना बनवाने में थोड़ा लेट कर दे क्योंकि गन्ना भी छोटता है ना।
1: अच्छा
0: जी,
1: कौन से गन्ने की बुआई की थी
2: तो
1: आपने?
2: मेरे पास तो वो है क्या नाम, 0-18।
1: 0-118। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप इसकी सही से देखभाल करें गन्ने की। और इसके अलावा और भी कुछ खेती बाड़ी में और कुछ कर रखा है आपने?
2: हाँ, धान लगवा रखा है
1: अच्छा,
2: करूँ।
0: बहुत बढ़िया। कौन से धान लगाई है इस बार आपने?
2: 4 बीघे तो लगवाई, क्या नाम, सरबती,
0: अच्छा
2: और 2 बीघे वो है बासमती।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपकी पसंद पर सुन लेते हैं प्यारी सी रागनी।
2: नमस्कार।

0: दोष धरे सरकार के ऊपर ये नहीं परवाह करती कैसे पटे कुटुंब का।
1: 20 आदमी एक कुटुंब में, अभी हमारे किसान भाई ने देखो मैनपाल सिंह की आवाज में प्यारी सी रागनी सुनी, और देखो हिमांशु भैया अब एक बार नंबर फिर बता देते हैं।
2: बिल्कुल भैया, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9457072888,
1: और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 0341, और हमारा लैंडलाइन नंबर है 230105।
2: और भैया देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: बिल्कुल भैया,
2: हेलो लोकमंजरी।
3: हेलो लोकमंजरी
2: जी, नमस्कार जी।
3: हिमांशु रंजन जी नमस्कार, हिमांशु रंजन जी और अंकित कुमार को मेरे राम राम
1: जी। राम राम जी,
3: और
1: बताइए कैसे हैं
2: जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
3: हाँ जी, मैं ग्राम घाटोरणा जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदनगिरी बोल रहा हूँ जी।
1: जी, और मदनगिरी जी कैसे हैं आप?
3: बस ठीक हूँ जी, आप बताएं, आप आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं?
2: बिल्कुल बहुत बढ़िया है यहाँ पर सब। और आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
3: बहुत अच्छी चल रही है जी, हम तो ज्यादातर गन्ना उत्पादन करते हैं जी।
2: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो गन्ना ठीक
3: तो धान उसकी खेती जो है बस काम चलाओ करते हैं, लेकिन हमारी जो मुख्य फसल है वो गन्ना है।
2: अच्छा, तो गन्ना बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है आपका, बंधाई कर ली आपने गन्ने की?
3: बहुत बढ़िया खड़ा है जी, बंधाई चल रही है, 118 गन्ना है।
2: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आप कृषिगत कार्यक्रम डेली सुनते हैं, तो लाभ यहाँ से जो मिलता है वो आपको, लाभ कमाते हैं आप यहाँ से?
3: जी अगर लाभ ना होता तो मैं सुनता ही क्यों।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तो मदनगिरी जी, बारिश कैसी हो रही है आपके यहाँ पर?
3: बारिश बहुत कम है जी, देखो।
1: अच्छा, तो
3: बारिश बहुत कम है, आज तो हुई नहीं, 2-3 दिन से तो बूंद पड़ी नहीं बिल्कुल भी।
1: बिल्कुल, तो अपनी फसलों में नमी बनाए रखी है जरूर
3: जी? वो तो कर रहे, कोशिश कर रहे जी,
1: जी।
3: नमी बनी रहा है, वो तो कोशिश कर रहा है।
2: और अपनी फसलों की उचित देखभाल रखें। और आज आप कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं ये भी बता दीजिए।
3: आज वो महाभारत की रागनी सुनवा देना, धर्म युधिष्ठिर कांप गया और भर के छत्ती आई, धरती ऊपर लाश पड़ी जी, चारों तरफ दिखाई।
1: जी जी जी,
3: और मैं 2-4 नाम लेना चाहता हूँ जी।
2: जी जी बताइए।
3: आचार्य सत्यवीर सिंह जी है, प्रकाश चंद जी है, और अमित धीमान जी है, आशीष चौधरी जी है, राशि संतारी है, यही है बस
1: जी।
2: जी जी जी बिल्कुल जी। तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारी सी रागनी।
3: धन्यवाद आपका।

0: तो हेलो लोकमंत्री,
1: हेलो हेलो लोकमंत्री सर, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: नमस्ते,
0: जी। कौन सा बात कर रहे हैं
1: मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ,
0: जी? कहाँ से?
1: छतपुर के पास कसौर गांव से। सर
0: जी, अमित जी कैसे हैं
1: हम तो बढ़िया है, आप सुनाए सर। सर
0: और आपका काम धंधा कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया है सब।
0: चलिए, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आकाशवाणी परिवार सब ठीक है। और आपकी खेती किसानी ठीक चल रही है?
1: हाँ जी सर, बढ़िया है
0: चलिए, आप आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं वो बता दीजिए।
1: सर। एक लोगी सुना देना, मेरे पाँच छे आवण का
0: जी
1: क्या
0: जी
1: मतलब सर।
0: जी जी
1: जी
0: बिल्कुल। तो अमित जी, आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा लोकगीत।
1: धोता तो एक नाम है सर,
0: जी जी ले
1: जी
0: लीजिए।
1: आचार्य सत्यवीर जी राहु नंगली से,
0: जी
1: और गांव भरोना से मदन गिरी जी, और ये वे हैं हरपाल शास्त्री जी चिड़ियापुर,
0: जी
1: ये हैं, और आप सब जिसमें।
0: चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलिए जरा कॉल निकाल लेते हैं।

0: हेलो लोकमंजरी
1: हेलो लोकमंजरी,
0: जी, नमस्कार
1: मैं
0: जी।
1: ब्रजपाल बोल रहा सर जी, गांव राम सावाड़ा जिला सहारनपुर का जी।
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रजपाल जी हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद सर। हम तो ठीक है सर, दुआ है ऊपर वाले की। आप सुनाओ कैसे हो
0: जी हम
1: जी?
0: सब बहुत बढ़िया हैं। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी?
1: अच्छी चल रही, ठीक ठाक है जी।
0: जी, और अब आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम इस समय बादल छाया हुआ है जी,
0: बारिश तो अच्छी हो रही वहाँ पे?
1: बारिश हुई थी जी लगभग 8 दिन पहले। खेती
0: अच्छा, तो और खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी?
1: बाड़ी बढ़िया है जी,
0: तो गन्ना लगा लिया, वो धान लगा
1: गन्ना
0: रखा
1: लगा
0: है?
1: रखा है जी। हाँ जी, थोड़ा धान भी है, पॉपुलर भी है थोड़ा सा
0: अच्छा,
1: बहुत।
0: पॉपुलर
1: बढ़िया
0: की
1: है
0: खेती भी आप करते हैं।
1: जी।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: मैन पालती गाय रागनी सुना दो जी,
0: जी
1: उन
0: जी
1: देश जी प्यार
0: जी
1: से
0: जी
1: कुछ कर जी।
0: तो बिल्कुल, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की प्यारी सी रागनी। और आपने हमें कॉल किया
1: राम
0: इसके
1: राम
0: लिए
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो लोकमंजरी
1: हेलो लोक मंजरी
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं साबिर अली, जिला मुरादाबाद, ग्राम ध्यानपुरा।
0: जी साबिर अली जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है साहब, आप कैसे हैं? हाँ,
0: और आपका काम धंधा कैसा चल रहा है?
1: काम धंधा ठीक चल रहा है साहब, आपकी दुआएं हैं।
0: जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: कोई हीर रांझे की राग नहीं सुनवा दूंगी।
0: जी, तो साबिर अली जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की है प्यारी सी रागनी।

0: तो अंकित भैया, ये तो था आज का लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।
1: बिल्कुल भैया।
0: और देखो अंकित भैया, जिन किसान भाइयों की आज कॉल किसी कारण से नहीं लगी है, तो भैया वो अगले शनिवार यानी कि 1 अगस्त 2026 को हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। और भैया उन्हें हमारे किसान भाइयों को नंबर बता दो।
1: बिल्कुल भैया, हमारा मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88 और एक हमारा लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 01341 और लैंडलाइन नंबर है 230105।
0: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई ने भैया नंबर लिख लिया होगा। और भैया अब घड़ी की ओर को भी देख लो, घड़ी क्या कह रही है भैया?
1: भैया घड़ी कह रही है कि अब ज्यादा बातचीत हम करने की इजाजत नहीं दे रही है, तो भैया अब जल्दी से पता और बता दो।
0: बिल्कुल भैया, हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद और भैया पिन कोड है 246763।
1: बिल्कुल भैया, और भैया अब दोनों भैया कर लेते हैं जल्दी से
0: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए शंभुनाथ उपखंड अधिकारी SDO आदर्श नगर बिजली घर नजीबाबाद से अंकित सैनी की बातचीत। विषय है UPPCL उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड का खुद से बढ़ने की समस्या और उससे बचने के उपाय।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं अंकित सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और जैसे कि न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम आजकल एक आम समस्या लोगों के बीच में देख रहे हैं, बिजली बिल को लेकर के। देखने में आता है कि उपभोक्ता कह रहा है, बिजली घर में जाकर के शिकायत कर रहा है कि साहब हमारा तो लोड खुद ही बढ़ा दिया बिजली वालों ने और हमारा इतना अतिरिक्त बिल आया है। उन सभी समस्याओं को लेकर के, उनके निदान को लेकर के, इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं उपखंड अधिकारी बिजली घर आदर्श नगर नजीबाबाद से SDO श्री शंभुनाथ जी। शंभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर
1: जी। शंभु जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं इसी प्रक्रिया से कि जो लोड सैंक्शन होता है, जब एक उपभोक्ता बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो उसका कनेक्शन लेने की क्या प्रक्रिया है, उसके लिए क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है?
2: हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और ऊर्जा मंत्री द्वारा उन्होंने बहुत ही सिंपल सेवा ऑनलाइन कर दिया, झटपट सेवा है
1: जी।
2: उस पे कोई भी उपभोक्ता अपना आधार कार्ड फोटो लेकर के और संबंधित घर से रिलेशन कोई पेपर हो, रजिस्ट्री कॉपी या हो, वो जाकर जनसेवा केंद्र पे
1: जी,
2: किसी भी जनसेवा केंद्र आसपास नियर हो या संबंधित नियरेस्ट बिजली घर हो
1: जी,
2: जानकारी लेकर के उसको ऑनलाइन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए 1912 पे भी फोन करके वो कनेक्शन को आप ऑनलाइन कर सकता है, उसका कनेक्शन तुरंत रिलीज होगा 7 डेज में
1: जी। बहुत अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के आप सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, उपभोक्ताओं को बिजली घर जाने की जरूरत नहीं है
2: जी।
1: जैसे कि पहले के पुराने समय में होता था कि बिजली घर में चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के
2: जी, जी, जी,
1: अब उन समस्या से छुटकारा
2: नहीं जान जी।
1: अच्छा सर, जो लोड स्वीकृत होता है वो उसका क्या पैमाना है कि एक जो हम अप्लाई उपभोक्ता अप्लाई कर रहा है कनेक्शन के लिए, तो उसकी जो डिमांड लोड है वो क्या, किस पैमाने को रख करके अप्लाई करेंगे, मुझे 2 किलोवाट का चाहिए, 3 किलोवाट का, उसका क्या पैमाना रखते हैं?
2: लोड जो अप्लाई होता है उनके जो पार्टिकुलर एरिया है स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उनका कनेक्शन अप्लाई हो। 2000 स्क्वायर फीट के है तो 2 किलोवाट का होगा, पर 1000 स्क्वायर फीट लगभग 1 किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई होता है कि इनके इतना खर्च होगा।
1: मतलब जो उपभोक्ता है उसका जो मकान बना हुआ है या दुकान जो भी उसका है भवन
2: जी,
1: उसके आकार के ऊपर।
2: हाँ, नॉर्मली डोमेस्टिक कनेक्शनों का जो है उसको एरिया के हिसाब से सेंक्शन किया जाता है, इसका लोड अमूमन 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पर किलोवाट किया जाता है
1: जी। तो उसमें घर के जो अप्लायंसेस हैं उनका भी कुछ रोल रहता है या केवल भूमि का आकार?
2: नहीं, उनका भी लिया जाता है, समय समय पर उसकी जांच की जाती है। कनेक्शन आवेदन के उपरांत हमारे JE साहब या कोई लाइनमैन जाके विजिट करता है कि जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये कनेक्शन जो अप्लाई है उसके आकार स्वीकृत है या नहीं है, यदि है तो उसको तुरंत आवेदन कर दिया जाता है, उसको लोड कनेक्शन निर्गत कर दिया जाता है
1: जी। अब सर बात आती है कि कनेक्शन हो गया, लोड सैंक्शन हो गया, मान लो सपोज कीजिए कि किसी का 2 किलोवाट का लोड सैंक्शन हुआ है और जब उसका आगामी बिल आता है अगले 1-2 महीने में, वो देखता है कि मुझे तो ऑटोमेटिकली मेरा लोड बढ़ा करके 3 किलोवाट कर दिया UPPCL ने या 4 किलोवाट कर दिया, उसी हिसाब से उसका बिल भी ज्यादा आ गया, फिर वो परेशान होकर के बिजली घर में जाता है, अपनी शिकायतें करता है, तो वो क्या आजकल समस्या उपभोक्ताओं के सामने आ रही है बढ़े हुए लोड की?
2: मैं आपको बता दूं सर कि उपभोक्ता को लोड बढ़ने से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। लोड बढ़ने से एक बार आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होती है, बाकी वो आपका आजीवन के लिए लाइसेंस मिल जाता है। जो वर्तमान में स्वीकृत भार होता है उसके कम अगर लोड चल रहा है तो कम का ही फिक्स बिल देना पड़ेगा आपको, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर एक अमून उदाहरण दे दूं, अगर किसी उपभोक्ता का 2 किलोवाट कनेक्शन है और उसका 3 किलोवाट स्वीकृत हो गया है, एक्सिस आ गई है, तो उसका ये जो 3 किलोवाट स्वीकृत हुआ उसका सिक्योरिटी मनी 400 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ के हिसाब से सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करा लिया गया है, बाकी जो स्वीकृत 3 किलोवाट है वो उससे अगर कम चला रहे हैं तो उसको उससे जितना चलेगा लगभग, अगर 1 किलोवाट चला रहे हैं तो 1 किलोवाट के हिसाब से फिक्स बिल आएगा, बाकी यूनिट से आ जाएगी। कि अगर 3 किलोवाट आपका बढ़ गया है तो 3 किलोवाट का आपका वो फिक्स बिल नहीं आएगा। अगर वर्तमान में आप 1 चला रहे हैं तो 1 किलोवाट के हिसाब से आएगा, 1 गुणे 110 रुपये फिक्स प्लस यूनिट चार्ज, 2 चला रहे हैं तो 2 के हिसाब से आए, 2 गुणे 110 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ के हिसाब से। 3 के ऊपर नहीं जाना है, जो स्वीकृत भार बढ़ गया उससे ऊपर नहीं जाए, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपका सिक्योरिटी मनी जमा करके फिर आप चला सकते हैं।
1: अच्छा सर, इसको जो UPPCL है वो ऑटोमेटिक किस प्रकार से एक उपभोक्ता का लोड खुद से बढ़ा देता है, क्योंकि सैंक्शन उसने अप्लाई करते हुए 2 किलोवाट का लिया, बिल आ गया उसका 3 किलोवाट।
2: किसी भी उपभोक्ता को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2005 में उसमें लिखा है, किसी उपभोक्ता ने अगर 3 महीने लगातार लोड उसका स्वीकृत भार से अधिक आ रहा है तो उसको नोटिस देते हुए उसका भार स्वयं वृद्धि कर दी जाती है, यदि वो स्वयं नहीं बढ़ाता है तो। यदि स्वयं आ जा रहा है 3 महीने के अंदर तो बढ़ा दिया जाएगा, नहीं आता तो विभाग नियमानुसार उसका भार वृद्धि कर देती है।
1: तो कहीं ना कहीं सर, जैसे आपने बताया कि 2005 की नियमावली है आपकी, और जो स्मार्ट मीटर का हमारा अभी आया है कंसेप्ट, ये अभी 1-2 साल पुराना ही है।
2: जी जी।
1: तो जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से हमारे लोड बढ़ गए ऑटोमेटिक, ये भी दूर है।
2: स्मार्ट मीटर से लोड नहीं बढ़ा है, स्मार्ट मीटर में जो एक्सिस डिमांड आई है, जो आप पहले नॉर्मल मीटर में चलाए होंगे उसका आता रहा होगा, वर्तमान में आया है उसके अकॉर्डिंग वो लोड बढ़ाए गए हैं। और आपको बता दें जो स्वीकृत भार था
1: जी
2: पूरे 1 साल का निकाला गया है, अप्रैल 2025 से मार्च 26 के बीच में, प्रथम 3 महीने या आखिरी 3 महीने या बीच के 3 महीने में जो स्वीकृत भार से अधिक लोड आया उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिया गया है। क्योंकि स्मार्ट मीटर जब लगा था तो उसका सिक्योरिटी मनी जो पहले जमा हुई थी उसको समायोजित बिल में कर दिया गया था, तो इस समय सिक्योरिटी मनी 0 है, इसलिए सिक्योरिटी मनी के रूप में प्रति 400 रुपये प्रति किलोवाट पर मंथ के हिसाब से वो आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में बिल में समायोजित कर रहे हैं। सिक्योरिटी मनी का वो कभी भी आपको वापस भी किया जा सकता है।
1: जी अच्छा सर, आप उपभोक्ताओं को क्या सलाह दें या वो किस प्रकार से जो अप्लायंसेज हैं उनका उपभोग करें कि उनका लोड जो सैंक्शन लोड है उन्होंने कनेक्शन लेते हुए कराया था उससे ज्यादा ना हो, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
2: मैं सर आपको बताऊं कि जब भी उपभोक्ता अपने घर में अमूमन जो विजुअली आंख से दिखता है वो अमूमन वो कनेक्शन वो लोड चलता रहता है, वो रनिंग में रहता है
1: जी।
2: कुछ ऐसे आपके घरों में उपकरण हैं जो मिनिमम समय के लिए उपयोग करते हैं लेकिन हैवी लोड होता है
1: जी।
2: जैसे आपको बता दें कि कभी कभी सुबह में रनिंग में जैसे आपका चल रहा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये सब ट्यूबलाइट है, ये सब चलते रहते हैं
1: जी।
2: लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में बच्चे को छोड़ना है तो कपड़े प्रेस करना है, तो कपड़े प्रेस करने वाले जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है 1000 वाट का होता है
1: जी।
2: उसी समय नहाना होता है तो टुल्लू पंप होता है, वो 746 वाट का होता है, 1000 पावर का है। और अगर उसी समय अगर आप गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप एसी भी चला लेते हैं
1: जी।
2: तो एक टाइम पे पार्टिकुलर में ढेर सारे लोड एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक्सिस लोड बढ़ जाता है, स्वीकृत भार से कहीं ज्यादा होता है। उस समय को उनको याद रखना होगा कि अगर हम बड़े हैवी लोड कोई चला रहे हैं तो उस लोड को चलाते समय नॉर्मल जो लोड है उसको बंद कर देना चाहिए
1: जी।
2: और एक समय में सारे एक साथ नहीं चला, वो उसको डिफरेंट डिफरेंट समय चले। अगर आधा घंटा हमको प्रेस करना है तो आधे घंटे प्रेस करते समय हमको समरसेबल पंप नहीं चलाना है, ना ओवन चलाना है और ना फिर वो चलाना है एसी
1: जी।
2: हैवी एक लोड चलाएं तो बाकी अन्य लोड बंद रखें
1: जी। ऊर्जा संरक्षण की ओर भी हमें ध्यान देना है कि जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं वही चलाएं एक समय
2: जी,
1: में
2: बिल्कुल
1: लोड अतिरिक्त ना हो।
2: मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि एक साथ लोड बढ़ाने से आपके घरों के उपकरण की सर्किट का लोड बढ़ता है और हमारे यहाँ भी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है
1: जी।
2: इसे मैं निवेदन है, आग्रह है उपभोक्ताओं से कि ये एक साथ लोड ना चलाएं। इसमें दोनों चीज हेल्दी रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहे, हमारा ट्रांसफार्मर भी स्वस्थ, सारे चीजें एक साथ चलती रहेंगी। गर्मियों में अक्सर ये होता है कि कहीं कहीं सर्किट फॉल्ट हो जाती है ओवरलोड होने की वजह से, उसका कारण है तक जैसे ही सप्लाई लगती है लगने के तुरंत उपरांत सारे उपकरण ऑन हो जाते हैं
1: जी,
2: तो उस पर सीधे लोड ट्रांसफार्मर पर आपके घर की सर्किट पे जाता है, घर की सर्किट से फिर ट्रांसफार्मर की तरफ लाइन पे आता है, ऐसे बढ़ते जाता है और ट्रांसफार्मर अंत हमारा जलता है।
1: अच्छा सर, जैसे अब ये बात आई गई है कि लोड ऊपर नीचे हो जाता है
2: जी
1: एक साथ सारे उपकरण जलाने से, तो उससे उपभोक्ताओं के जो घर के अप्लायंसेस हैं, उपकरण हैं, उनको नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए उपभोक्ता क्या कर सकते हैं?
2: उससे आप, मैंने आपको पहला मैं सुझाव दिया कि सारे लोड एक साथ नहीं चलाना चाहिए।
1: ठीक है
2: ये आपका तो हो गया पहले जहां से शुरू होता है
1: जी
2: आपका लोड बढ़ना,
1: जी
2: एक तो वहां हो गया। दूसरा आपका जो प्रोटेक्शन होता है आपकी वायरिंग का, अगर मान लीजिए आप चलाते समय ओवरलोड हो गया आपकी सर्किट और फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होने के बाद आपके उपकरण जो प्रोटेक्शन यूनिट लगी होती है आपके एमसीबी और रिले फ्यूज सेट जो लगे हो, तो एक प्रॉपर यानी कंडक्टर वे में मतलब लगे हों वायर वायर उसका, ताकि वो ट्रिप कर जाए या फ्यूज उड़ जाए। वाहतम अगर कोई सर्किट से फॉल्ट आता है तो मैं एक सुझाव दूंगा कि ओवर करंट रिले जरूर लगाएं,
1: जी
2: अर्थिंग जरूर कराएं, ताकि वो करंट तुरंत ग्राउंड कर सके, आपके सर्किट की तरफ फॉल्ट ना फ्लो हो सके।
1: जी जैसे बहुत से उपभोक्ता ये हमारा आपके जो सुझाव हैं उनको जरूर अपनाएंगे, और जो नहीं सुन पा रहे हैं तो उन श्रोताओं के लिए आपका यूपीपीसीएल का कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई कोई आपका ईमेल आईडी वगैरह, जिससे श्रोता या उपभोक्ता आप तक संपर्क कर सकें।
2: हमारे पावर कॉरपोरेशन ने बहुत ही

0: अच्छा वेबसाइट लॉन्च किया है 1912, उस पे आप कॉल करिए। कॉल करने के बाद आपको नंबर नहीं एक दो बार रिस्पांस मिलता है तो वो आप उनसे नंबर लिए संबंधित अधिकारी का, कोई एरिया का कौन सा अधिकारी है उसका नंबर मिलेगा, उस पे आप मैसेज करिए, फोन करिए, जरूर आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिस्पांस मिलेगा। मिनिमम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी समय, अगर रात का समय है तो हर टाइम में आदमी अपना एक पर्टिकुलर समय होता है, आदमी उसमें समय के साथ साथ सारे समस्याओं का हल भी करता है
1: जी,
0: क्योंकि बिजली जाते ही आदमी तुरंत एक्टिव हो जाता है।
1: जी
0: उसको ये होता है कि बिजली हमको किस तरह से कैसे पहुंचा दे उपभोक्ता के हमारे पास फोन ना आवे, पूरे कर्म ईमानदारी के साथ आदमी काम करता है। अब थोड़ा सा मैन पावर के अभाव में आदमी थोड़ा सा डिले तो जरूर होता है, लेकिन काम वो करता है 100% है ईमानदारी के साथ में।
1: जी अच्छा सर, अब अंत में चलते चलते आप UPPCL के उपभोक्ताओं से, हमारे श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं ये कहूंगा सभी उपभोक्ताओं से हमारे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे एक साथ सारे लोड एक साथ ना चलाएं, क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो आपके बिल में बिल भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से दबाव भी पड़ेगा और ये दिक्कतें आएंगी और हमारे सर्किट भी ओवरलोड होगा। संयम बना के बिजली का उपभोग करें, संयमित रूप से एक साथ लोड ना डालें, इससे आप भी यानी कि हेल्दी रहेंगे, आपके भी पॉकेट पर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और आप हमें भी नहीं परेशान करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है।
1: जी बिल्कुल जी शंभू जी, निश्चित ही आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता और आपके UPPCL के उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आप आकाशवाणी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, मुझे आपने ऐसा अवसर प्रदान किया सर, मैं आपके लिए बहुत आभार हूँ और भविष्य में अगर फिर कभी जरूरत हो मुझे देने के लिए तो मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए। सादर धन्यवाद
1: जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी शंभूनाथ, उपखंड अधिकारी SDO आदर्श नगर बिजली घर नजीबाबाद से अंकित सैनी की बातचीत। विषय था UPPCL उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड का खुद से बढ़ने की समस्या और उससे बचने के उपाय। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तीसरी कसम से ये गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म कश्मीर की गली से। संगीत ओपी नैयर का है और गीत लिखा है एसएच बिहारी ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म कश्मीर की कली के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देश गान।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात्रि 10 बजे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और ये कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनिएगा मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम मन की बात आप सुनेंगे कल सुबह 10:55 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कल रात्रि 10 बजे द आकाशवाणी पॉडकास्ट रात्रि 9 बजे। इसके अंतर्गत सुनेगा प्रख्यात साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल को। ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। अदबी दुनिया के अंतर्गत कल शाम 7:50 पर सुनेगा सुधीर कुमार परवास से कलाम। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर आप सुनेंगे हेमंत पाठक के गाए गीत। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर सुनेगा सविता मिश्रा से कहानी, शीर्षक होगा स्मृति वन। कृषि जगत में शाम 6:05 पर सुनेगा डॉक्टर आकाश सहायक प्रबंधक शस्य विज्ञान विभाग RSMPG कॉलेज धामपुर से जितेंद्र कुमार की बातचीत। विषय होगा गन्ना फसल में पोक का बोइंग व लाल सड़न रोग के कारण लक्षण व नियंत्रण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई FIR दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और FIR की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।
2: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी ताक को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
1: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।
0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उजहानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी।
2: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उजहानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उजहानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
0: प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।
3: मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन।
2: घट घट में

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला भजन।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन। इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: पर
0: रात्रि के 8 बजे
1: प्रश्नकाल में
0: में
1: हंगामा किया जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता

हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिड़ला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी

ईट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो

विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म यादगार से। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत लिखा है इंदिवर ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं लीजिए, सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दाग से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

और श्रोताओं लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बरसात से। आवाजें हैं कुमार शानू की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है अनवर सागर ने।

कुमार शानू के गाए फिल्म बरसात के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के निजी विवाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बादशाह से कुछ गीत। और इस फिल्म के गीतों को अपने संगीत से सवारा है अनु मलिक ने। कार्यक्रम का पहला गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, गीत लिखा है जावेद अख्तर और समीर ने। फिल्म का नाम है बादशाह।

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में अभी सुना आपने ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म बादशाह से। बादशाह फिल्म का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और साथियों की आवाजों में। संगीत अनु मलिक का है और गीत लिखा है जावेद अख्तर और समीर ने।

और श्रोताओं लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत अभिजीत और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। गीत समीर का है और संगीत अनु मलिक का। फिल्म का नाम बादशाह।

0: अभिजीत और अलका याग्निक के गाए फिल्म बादशाह के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आज आपने सुने फिल्म बादशाह से कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी

0: को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विद्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती

0: साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर रिसर्चर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिले तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की, नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर के मकबरे पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तिसादी मुतालियात की बुखारिस यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। यह एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के तीन रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। तीन मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है, जिससे भारत के रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सोना बेशा यानी सोने से तैयार मलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरात आरास्ता इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। पेश एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज सोनावेशा में निहायत शान शौकत के साथ रथ पर सवार हैं, जो खूबसूरत ताज, हार, बाजूबंद, बालियां और दीगर रिवायती जेवरात से आरास्ता हैं और ये तकरीबन 208 किलोग्राम सोने और दीगर कीमती जवाहरात से तैयार किए गए हैं। ये पवित्र सुनहरे लिबास, जो सालाना रथ यात्रा की अहम तरीन रसूमात में से एक है, अकीदतमंदों के दर्शन के लिए आधी रात तक जारी रहेगा। पूरा शहर अकीदत के जज्बे से सरशार है। इस तकरीब के पुरम इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे दैरिल जोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर दो बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम से कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए तीन विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने दो दो विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कनाडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहत सिंह ने मिस्र की बार्ब समे को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। अनहित सिंह तारीख में महज दूसरी खिलाड़ी हैं जो जोशना चिनप्पा के बाद इस सरकर्दा खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताज़ा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये

0: पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं DAVPG कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहाँ बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम

0: कोयला भी जला सकते हैं। ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 केजी उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है। और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया, और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं। दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
1: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर का बहुत फंडामेंटल यूज है, जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है, तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
0: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
1: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो है रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
0: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
1: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन

0: स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और आईवीएफ तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से आईवीएफ तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स, की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है, और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे 2 एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे 3 होता है, फिर डे 4 होता है, फिर डे 5 होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है, और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है, और फिर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों, IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं,
2: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते, तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं, अटेम्प्ट्स हैं IVF के, वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा, एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
1: दोस्तों, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण

0: और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
1: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग जगह है वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
1: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण की लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। हमें अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है। और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है आबादी वाले क्षेत्र से लगती है वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
0: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहाँ कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार है, फ्रुगल नवाचार है, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गांव से जोड़ना, ये STI है क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
0: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला देखा

0: थी, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़ें, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सुनें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही हैं बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हुआ, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेके नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती आदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती आदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती आदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नील माधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती आदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती आदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती आदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरब अंग गायकी उत्सव।
0: आइए सुनते हैं श्रीमती आदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल है बैरन रतिया कैसे आऊ।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती आदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामोद सेट टू दीपचंदी ताल बैरन रतिया।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी, रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was दादरा set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashvani Delhi. Namaskar. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी व्यक्ति की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक

ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।